इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है। इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है।

0: गालियों में दूं, फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
1: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: जाने वो कैसे

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET को मान्य योग्यता माना गया। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। शिमला मतौर फोरलेन अलाइनमेंट मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका की बंद। दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा। खराब सोलर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम। पंचायत स्तर पर लगाई गई लाइटों की मरम्मत पंचायतें करेंगी। जल शक्ति विभाग के 393 आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत सत्यापित फीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सहायता उपलब्ध करवाना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 90,000 फीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों तथा 2.5 लाख से अधिक कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया गया है। योजना का दायरा अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ड्रेन कर्मियों तथा FTP और FFTP कर्मियों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है। हिमाचल के उच्च शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को स्कूलों को पत्र जारी कर संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। पात्र विद्यार्थी यदि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET वैध योग्यता है। केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द नहीं किया जा सकता। ये मामला शिक्षक समाज शास्त्र के पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज किया गया था कि कट ऑफ तारीख से पहले उनके पास HPTET प्रमाण पत्र नहीं था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस शिक्षक भर्ती के लिए CTET को वैध योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत के समक्ष शिक्षा विभाग की ओर से लिखित निर्देश भी पेश किए गए। विभाग ने स्वीकार किया कि चूंकि CBSE अपने संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए CTET को मान्य मानता है, इसलिए केवल HPTET न होने के आधार पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला मटौर फोरलेन अलाइनमेंट मामले में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका को बंद कर दिया है। मामला शिमला से नौनी चौक के बीच फोरलेन के अलाइनमेंट में हुए बदलाव से संबंधित था। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों द्वारा विचार विमर्श के बाद लिए गए नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। अदालत ने ये मामला अक्टूबर 2024 में स्वतः संज्ञान में लिया था। इसमें अलाइनमेंट बदलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। NHAI ने अदालत में बताया कि शिमला से नौनी चौक वाले हिस्से को 2 पैकेजों में बांटा गया है। NHAI के अनुसार नई अलाइनमेंट को उच्च स्तरीय बैठकों के बाद मंजूरी दी गई थी। NHAI ने यह भी कहा कि नई अलाइनमेंट से सड़क की ज्यामिति बेहतर होगी, पेड़ों की कटाई कम होगी और लोगों के विस्थापन तथा संपत्तियों के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शिमला शहर में यातायात दबाव कम करने का भी दावा किया गया है।
मंडी जिले के बलह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा की है। हालांकि डीए कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से जुड़ी अपना परिवार सुखी परिवार योजना में भी बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की शर्त हटाई जाएगी। साथ ही पात्रता के लिए परिवार की आय सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपए किए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना और पुलिस विभाग में भर्ती से जुड़े विषयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़ी सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर शिकायतों के बीच संबंधित विभाग ने इन्हें ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने के बाद इन्हें ठीक करने का अभियान शुरू किया गया है। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से संबंधित एजेंसियों और कंपनियों को खराब लाइटों की मरम्मत निर्धारित समय के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायतों के स्तर पर लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों की होगी। शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब सोलर लाइटों की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई स्थानों पर नई लाइटें लगाने के बावजूद उनके खराब होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विभाग का

उनकी वास्तविक आवश्यकता रहने तक जो भी पहले हो मान्य रहेगा। यदि इन पदों के विरुद्ध नियमित व्यवस्था हो जाती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। यह सेवा विस्तार उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले और वित्त विभाग के नियमों के अधीन भी बताया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जाएगी और मौजूदा योजनाओं तथा परियोजनाओं के बजट से ही खर्च वहन किया जाएगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, और जीनियस?
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ। मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना। ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

गुड मॉर्निंग सभी श्रोताओं को। श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के इस लाइव कार्यक्रम में। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और इस समय लाइव हूं फेसबुक पेज से भी। तो हमारे सभी श्रोताओं को का बहुत बहुत स्वागत और सभी श्रोताओं को आज की सुबह बहुत बहुत मुबारक, खास करके उन सभी श्रोताओं को जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का अपना खास दिवस मना रहे हैं 28 सितंबर। और आज है सोमवार, यानी कि वीकेंड्स खत्म कर करके अब हम आज के दिन फिर से अपनी एनर्जीज पूरी गेन करके वापस अपने अपने कामों पर लौट आए हैं। लेकिन आपको पता है दो डिपार्टमेंट होते हैं जिनको कि शायद काफ़ी जीएच में भी छुट्टी नहीं होती है और संडेज को भी वो अपने कामों में लगे ही रहते हैं। एक तो हमारा वाला रेडियो आप हर दिन ही सुनते हैं, है ना, और कभी कभी जो कुरियर वाले होते हैं वो, और या फिर वो जो भी इधर से उधर मैसेजेस पहुंचाते हैं आप लोगों तक पहुंचते हैं, और साथ में शायद पोस्ट ऑफिसेस भी होते हैं जिनको संडे को तो होती है लेकिन कई जगह पर वो संडे को भी काम करते हैं। और अभी तो बैंक भी संडे को खुला हुआ था, इसके चलते कि शायद 3 दिनों का जो हड़ताल है वो हो रही है लेकिन वो अब स्थगित हो गई है। अभी सुबह ही मैं कहीं किसी स्टेशन से एक कार्यक्रम सुन रही थी तो वहाँ पर वो शायद उनको नहीं पता होगा तो वो उद्घोषिका कह रही थी कि ये जो हड़ताल है ये शुरू हो चुकी है और आज पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, हड़ताल स्थगित हो चुकी है और इसकी नोटिफिकेशन कल ही आ गई थी जो कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देख ली थी, अखबार में आज छपा है। और इसके 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ साथ 88.4 MHz हमीरपुर में डटवाल की आवाज़ से भी आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। वैसे तो आप हमें देश विदेश में ऐप के ज़रिए भी सुन लेते हैं और रेडियो के ज़रिए तो सभी श्रोता हमें सुनते ही हैं चाहे वो कहीं पर भी हों। रेडियो के जरिए नहीं सुन पाते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो गुंजन धर्मशाला का ग्रीन सा लोगो है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हम तक पहुंच सकते हैं आप। उम्मीद कर रही हूं कि फेसबुक पेज से भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। और वैसे भी आज कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं हमें आपसे करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बाद में करूँगी, पहले मैं बात करती हूँ अकेले चलने की। जी हाँ, हमारे देश में या हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो अकेले रहते हैं, अकेले चलते हैं। कई बार लोग उन्हें कुछ भी कह देते हैं कि भाई ये समाज में रह करके नहीं चलता या शायद उसे कोई और ही उपाधि दे दी जाती है, परंतु यहाँ पर मैं एक विचार लेना चाहूँगी इसी से संबंधित। जुनू हो दिल में तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है, जो अकेले चलते हैं इतिहास अक्सर वही बनाते हैं। और इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं आज मेरे पास कार्यक्रम में, कोशिश करूंगी कि एक एक पर मैं प्रकाश डाल सकूं। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कारवां हमेशा बाद में बनता है, शुरुआत हमेशा किसी एक अकेले इंसान के कदम बढ़ाने से होती है। जब कोई व्यक्ति समाज की परवाह किए बिना किसी बदलाव के लिए अकेले चलने का हौसला रखता है ना, तो एक दिन जमाना भी उसके पीछे चलता है। अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है जो कि बड़े बड़े बदलावों की नींव रखता है। मैं किसी और गीत से शुरू करना चाह रही थी लेकिन अब आप सभी के रेडियो सेट्स पर आ रहा है ये गीत, संबंध फिल्म का गीत है, मुकेश की आवाज़।

0: अकेला।
1: तो दोस्तों आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बातें करेंगे कुछ ऐसे ही दृढ़ निश्चयी और अकेले चलने वाले राहियों की,
0: तेरा मेला पीछे झूठा राही,
1: जिन्होंने अकेले ही पहल की और समाज के सामने मिसालें कायम की। तो अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि आप अकेले चल रहे हैं। अक्सर हम सोच लेते हैं कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी टीम या फिर पूरी दुनिया का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन सच तो ये है कि समाज को बदलने वाली हर बड़ी क्रांति की शुरुआत किसी एक अकेले इंसान की सोच और उसके पहले अकेले कदम से ही हुई। अकेले चलना आसान नहीं होता है, इसमें रास्ते में मुश्किलें भी खुद ही झेलनी पड़ती हैं और समाज के सवालों को भी खुद ही जवाब देने पड़ते हैं, उनको सुनना पड़ता है। लेकिन जो इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है वो दशरथ मांझी की तरह अकेले ही पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना देता है। समझ गए ना आप।

जी दोस्तों, तो अकेला चलना कितना बेहतर होता है या फिर कितना नुकसानदायक होता है, जानेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, आप चलें हम मौसम की ओर। जी हाँ, धर्मशाला में अभी का अगर बात करूं तो तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और मौसम अभी तो फिलहाल साफ से लेकर के हल्की धूप वाला बना हुआ है।

मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो आसमान में थोड़े थोड़े बादल तो थे, परंतु कहा यह जा रहा है कि स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि धूप और होगी और आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर में हल्की बौछारें हो सकती हैं, बादल भी छा सकते हैं। हवा में नमी की बात करूं तो 65% से लेकर के 80% तक नमी रहेगी और 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है।

श्रोताओं, ये हमने जानकारी दी आपको आज के अभी के मौसम के बारे में। और प्यारी सी सुबह हुई है, लीजिए प्यारी सी सुबह क्या कहती है ये भी जान।

दोस्तों, कैसा लगा आपको गीत 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, और मेरे साथ टेक्निकल सपोर्ट में हैं शशि। तो 28 सितंबर में हम पहुंच चुके हैं, और अब वैसे ये वक्त होता था ना प्रादेशिक समाचारों का, तो 9:20 हो चुके हैं, घड़ियां मिला लीजिए अपनी। अब इतने समय से ना हमें आदत हो गई है ना कि ये बताने की आपको कि अब प्रादेशिक समाचारों का समय हो गया है, अब हम आपको 9:30 पर मिलेंगे। दिमाग में वही कहीं ना कहीं पीछे चलता रहता है, परंतु एकदम से खुद को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, अब तो समाचारों का वक्त 9:50 हो गया है, जो कि 10 तक चलते हैं। और हमारे वो श्रोता जो काफ़ी दिनों से रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं, आज ही आज उन्होंने लगाया होगा अपना रेडियो, सेट ऑन किया होगा, या किसी न किसी वजह से कहीं बाहर होंगे, तो उनके लिए भी ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी आपको बता दी। श्रोताओं, आज बहुत सारे दिवस हैं। विश्व नदी दिवस है आज, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, हमारे देश में सूचना का अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस भी आज ही है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट डे विश्व रैबीज डे आज मनाया जा रहा है।

हमें लगता है कुछ हैंग हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर महाशय जल्दी से ठीक हो जाएं, और यहाँ पर हमसे भी कुछ शायद गलती हो गई है जो कि हम भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम 28 सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जंप करके पता नहीं कहाँ पहुँच गए, शायद हम पीछे पहुँच गए थे। तो अब आपको हम बताते हैं सही सही। तो सूचना का सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं आज। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को द्वारा घोषित ये दिन नागरिकों के सूचना के अधिकार, पारदर्शिता और खुली सरकार के महत्व पर जोर देता है, और वैश्विक अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात के अधिकारों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस। और साथ ही में विश्व नदी दिवस की बात मैंने की थी, ये दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो कि वैसे तो हो चुका है कल। जी हाँ, कल था विश्व नदी दिवस, लेकिन नदियों के बारे में कोई बात हुई नहीं, इसलिए हम आज के कार्यक्रम में शायद हो सकता है थोड़ी सी बात करें। और कई देशों में, अगर बाकी देशों की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अच्छा पड़ोसी दिवस, राष्ट्रीय मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने का दिवस भी है, आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे। जी हाँ, ये सभी दिवस जो हैं ये अलग अलग देशों में मनाए जा रहे हैं, और भारत, हमारे देश में आज शहीद भगत सिंह जयंती के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है 28 सितंबर का आज का दिन। श्रोताओं, हमारा सिस्टम हैंग हुआ है, तो थोड़ा सा हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके ठीक होने का।

भारत के महान दम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इस अवसर पर देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में देशभक्ति कार्यक्रम, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कई राज्यों में इस दिन विशेष राजकीय समारोह भी होते हैं।

और श्रोताओं इसी के साथ सूचना के अधिकार का दिवस भी आज ही है। तो भारत में 2005 में लागू हुए सूचना के अधिकार, सूचना के RTI जो एक्ट है, और सूचना के महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर RTI जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो वैश्विक सूचना अधिकार दिवस के साथ मेल खाता है।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आज कई सांस्कृतिक कैलेंडर्स के अनुसार शिरडी के साई बाबा का प्राकट्य जन्म भी 28 सितंबर 1836 को माना जाता है, जिसके कारण देश के कई सारी साई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चनाएं की जा रही हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और ऐतिहासिक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे श्री नारायण चतुर्वेदी का जन्म भी 28 सितंबर 1885 को हुआ था और इस दिन साहित्यिक गोष्ठियों को में भी भाग लिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। इसी के साथ हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जयंती, जन्म जयंती भी आज मनाई जा रही है। भारत रत्न से सम्मानित महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को और संगीत जगत और सांस्कृतिक संगठन इस दिन उनकी याद में संगीत सभाएं आयोजित करते हैं और हम भी उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत समर्पित कर रहे हैं जो उन्हीं ने गाया है और उनका साथ दिया है बच्चों ने।

तो आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में सुना ये खूबसूरत सा गीत, तेरी दुनिया में नहीं कोई हमारा अपना। और आज हम अकेलेपन की बात भी करेंगे, कोशिश तो मेरी है कि मैं बात ज़रूर करूं। बारूद फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।

और श्रोताओं, आज है विश्व रेबीज डे, जिस पर की मुख्य बात हमें करनी है। अब रेबीज एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस की वजह से होता है, जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार यानी सलाइवा में पाया जाता है। जब कोई संक्रमित जानवर किसी इंसान या दूसरे जानवर को काटता है, खरोंच मारता है या फिर किसी खुले घाव को चाट लेता है, तो ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये वायरस सीधे केंद्रीय तंत्रिका यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, स्पाइनल कॉर्ड पर, जिससे कि मस्तिष्क में सूजन आ जाती है।

और यदि समय पर इसके लक्षण ना दिखें या फिर लक्षण दिखने का इंतज़ार किया जाए और इलाज समय पर ना हो तो इंसानों में 100% जानलेवा है। इंसानों में रेबीज़ के 99% मामले संक्रमित कुत्तों के काटने से ही होते हैं और कुत्ते ही इस वायरस का सबसे बड़ा वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं। जब एक आवारा या संक्रमित कुत्ता दूसरे स्वस्थ कुत्ते या पशु को काटता है तो उसको भी रैबिस हो जाता है और रैबिस होने के बाद कुत्ते हिंसक हो जाते हैं या फिर बहुत सुस्त हो जाते हैं और 10 दिन के भीतर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और गर्म खून वाले जानवरों होते हैं, ये रेंगने वाले जीवों, छिपकली, सांप या फिर पक्षियों को नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो जानवरों को दो श्रेणियों में समझा जा सकता है, एक तो जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स, चमगादड़, बैट, लोमड़ी, सियार, नेवला और बंदर। जंगलों में ये बीमारी इन्हीं जानवरों के जरिए फैलती है। और कुत्ता और बिल्ली के अलावा ये गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, गधा जैसे पालतू जानवरों को भी हो सकता है यदि उन्हें किसी रेबीज संक्रमित कुत्ते या फिर सियार ने काट लिया हो। एक महत्वपूर्ण बात हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि चूहे, गिलहरी और खरगोश जैसे कुतरने वाले जीवों के काटने से रेबीज होने का खतरा न के बराबर होता है, क्योंकि ये आमतौर पर रेबीज वायरस के वाहक नहीं होते हैं। परंतु अगर फिर भी ये काट लें तो आपको अस्पताल का रुख जरूर करना चाहिए। और रेबीज का इलाज केवल तभी संभव है जब शरीर में इसके लक्षण न दिखाई दें। एक बार जब रेबीज के लक्षण जैसे पानी से डरना, हवा से डरना या पागलपन की जो हरकतें शुरू हो जाती हैं ना, तो दुनिया ऐसा माना जाता है कि दुनिया की कोई भी दवा इसे ठीक नहीं कर सकती है। ये 100% जानलेवा हो जाता है।

श्रोताओं, इस पर हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी आपकी जो बात है वो हम सुनवाएं आपके साथ, आपको डॉक्टर की बात सुनवाएं कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम में एक गीत और लेते हैं।

तो आज मौसम कैसा है भाई? आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ तो सच में बेईमानी है। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में। तो जैसा कि हम पहले आपसे कह रहे थे कि रेबीज के अगर लक्षण ना भी नजर आए तो भी फटाफट से आपको पता लग जाए कि आपको काट लिया है कुत्ते ने, या फिर आपके घर के जानवर को किसी को काट लिया है, तो फटाफट से उसे लेकर के पशु चिकित्सालय या फिर खुद अस्पताल में ज़रूर जाएं, बजाय इसके कि कहीं इधर उधर आप भटकते रहें कि कोई कुछ धागा बांध देगा या आपको कुछ खिला देगा या पिला देगा। चलिए, अगर उसमें आपकी आस्था है तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन अस्पताल जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि संक्रमित या फिर आवारा जानवर के काटने के बाद बिना एक मिनट भी गवाएं जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज उपचार शुरू करवा देना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने से पहले वायरस के असर को कम करने के लिए कुछ कदम उठा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि काटे गए स्थान को तुरंत बहते हुए पानी यानी नल के नीचे और साबुन से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोएं। साबुन में मौजूद तत्व जो होते हैं वो रेबीज वायरस को की बाहरी परत को काफ़ी हद तक नष्ट कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। धोने के बाद घाव पर पॉविडिन, आयोडीन जैसे बीटाडीन या फिर स्पिरिट आप लगा सकते हैं, और घाव पर पट्टी या बैंडेज बिल्कुल न बांधें और ना ही टांके लगवाएं जब तक कि डॉक्टर ऐसा करने को ना कहे। एक एंटी रेबीज वैक्सीन आता है, ये टीका शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत देता है। इसके कुल 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं जो कि डॉक्टर द्वारा बताए गए तय दिनों जैसे कि 0, 3, 7, 14 और 28वें दिन पर लगवाना अनिवार्य होता है, और इसकी एक भी डोज आपको छोड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए।

चलिए, इस विषय पर हम आगे और भी बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं कार्यक्रम में। और आपसे, जैसे मैंने कहा, कि कोशिश मेरी रहेगी कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से हम बातचीत करें और वो आपको भी सुनवाएं कम शब्दों में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर। 9:50 होने को हैं और अब हम लेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भारत आज मना रहा सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को बताया एक महत्वपूर्ण पड़ाव। शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती आज। मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर। आज से शुरू होने वाले 3 दिन के देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। और CWC की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज जाएंगे दिल्ली, कल बैठक में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उसी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को रेखांकित किया। इसके बाद

0: कर सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, आवास और अन्य सार्वजनिक ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लेगी। अधिक ब्यौरे के साथ शिमला से हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में मानसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए आज प्रदेश आ रही अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को राज्य सरकार द्वारा सौंपे ज्ञापन में 3,412 करोड़ 80 लाख रुपए की पुनर्निर्माण आवश्यकता बताई गई है। ज्ञापन के अनुसार सभी 12 जिले बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जबकि 6,215 किलोमीटर सड़कें, 29 पुल और 1,208 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसके चलते सड़क व पुल क्षेत्र में 2,531 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। इसके अलावा 4,784 पेयजल योजनाएं, 1,090 सिंचाई योजनाएं और 110 सीवरेज योजनाएं प्रभावित होने से जल शक्ति क्षेत्र में लगभग 385 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने ज्ञापन में आपदा रोधी और सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से विशेष सहायता का आग्रह भी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सिरमौर जिला की बेटी पुष्पा राणा के नेतृत्व में देश की बेटियों ने एशियन खेलों में देश को गोल्ड दिलाते हुए एशियन खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं देश लौट रही गोल्ड दिलाने वाली बेटियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।

0: के परिवार व गांव के लोग खुद पुष्पा राणा के स्वागत के लिए दिल्ली पहुंचे। ये दूसरा मौका है जब पुष्पा राणा एशियाई खेलों का हिस्सा बनी हो। इस बार पुष्पा राणा के लिए एशियाई खेल इसलिए भी खास था क्योंकि वो खुद भारतीय कबड्डी टीम की कप्तानी संभाल रही थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज

प्रभावित है। मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर बैठक हो सकती है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल

0: लोगों की चिंता बढ़ गई है। समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर कल शाम लोगों ने संजौली टनल से संजौली चौक तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन व मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, NHAI और निर्माण कंपनी से प्रभावित मकानों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। नगर निगम के पार्षद नरेंद्र ठाकुर और विनय शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर मंत्री और उपायुक्त के माध्यम से प्रशासन से बातचीत की है।
1: ये टनल बन रही है, कम से कम 250-300 मकानों के नीचे से टनल जा रही है, तो सारे मकानों में दरारें आनी अभी स्टार्ट हो गई, अभी स्टार्टिंग है, तो आगे तो 200-250 मकान है। सारे लोग परेशान हो गए, रात को धमाके होते हैं नीचे से, लेकिन कोई इसमें अभी कोई प्रशासन ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल तो ये भी काम बंद किया हुआ है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि गावर ने आगे दिया है, आगे से आगे सबलेट हुआ है, कई तो प्राइवेट ठेकेदारों को दिया, जो डंगे लगाते हैं उनको टनल का काम दे दिया हुआ करने को, तो हम चाहते हैं कोई अच्छी एजेंसी से काम हो।
0: प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी आज भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। अन्य क्षेत्रों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में भारी बदलाव आया है। जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज शिमला में दिन की शुरुआत हल्की गुनगुनी धूप और बादलों के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खासतौर पर ऊंचे पर्वतीय इलाकों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कल 29 सितंबर को भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव के चलते राज्य में मॉनसून की विदाई में भी देरी हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने बर्फबारी व हिमस्खलन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, किन्नौर, रोहतांग और स्पीति में बर्फबारी, छितकुल में हिमस्खलन, बारिश से बड़ी ठंड। दिव्य हिमाचल के शब्द है, भारी हिमस्खलन ने डराया किन्नौर, छितकुल में कुदरत का कहर। किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 26 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले। दैनिक जागरण लिखता है, 6 वर्ष बाद सितंबर में लाहौल की चोटियों पर हिमपात। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, कैथलीगढ़ से शिमला तक अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, दस्तावेज दिखाने की आज डेडलाइन, कल से शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कांगड़ा में कबड्डी मैच देखने के दौरान छज्जा गिरा, 22 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज मना रहा सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को बताया एक महत्वपूर्ण पड़ाव। शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती आज। मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित और CWC की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज जाएंगे दिल्ली, कल बैठक में होंगे शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुन रहे हैं और 10 बज गए हैं और ये लीजिए आपके रेडियो सेट्स पर प्यारा सा गीत।

0: हेलो हेलो हेलो। हाँ
1: हेलो। हाँ
0: जी सर, नमस्कार। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, से शायद चला।
1: हेलो हेलो
0: हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो
1: हेलो
0: हेलो सर,
1: हेलो
0: मैं सभी श्रोताओं को ये बता देना चाहती हूँ, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं डॉक्टर उमेश भारती।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नहीं जा रही आवाज़ सर, आपको आवाज़ आ रही है?
1: हेलो हेलो

हेलो हेलो हेलो सर, कोशिश कर रहे हैं हम कनेक्ट करने की। हेलो हेलो, चलिए श्रोता, हम चाह रहे थे कि डॉक्टर जो CMO सर हैं, उमेश भारती जी, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। इसी रेबिस का जो उन्होंने एक रेमेडी तैयार की है, उसके लिए तो हम आपकी बात उनसे करवा पाएँ, लेकिन ऐसा शायद आज संभव हो नहीं पा रहा है। हम कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है?
2: अबे यार, आ रही

0: हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो
0: हेलो सर, आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्षमा करें श्रोताओं, ये शायद आज फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता है वजह क्या है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, एक गीत सुनवाते हैं आपको और साथ ही में हम लगे रहेंगे ताकि हम सर से बात कर पाएँ।

हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश भारती, जिन्होंने आमतौर पर उमेश भारती भी हम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने वर्ष 2019 में रेबीज यानी पागल कुत्ते या फिर बंदर के काटने के बेहद सस्ते और प्रभावी इलाज की खोज करने के लिए देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और आजकल वो हमारी धर्मशाला में जोनल अस्पताल में बैठते हैं, सीएमओ के पद पर हैं। उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार अपने स्टूडियो से, लेकिन आज शायद हमारी किस्मत खराब है, कनेक्ट हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: हाँ सर, आवाज़ आ रही है हमारी?
1: आ रही
0: जी सर। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, वैसे हमने श्रोताओं को बता दिया है, आपका स्वागत है कार्यक्रम में बहुत बहुत। रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला।
1: थैंक यू।
0: हेलो।
1: हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हेलो।
0: हेलो सर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बहुत कम सर, आवाज़ कम है या ज़्यादा है, कैसा है?
1: हाँ, थोड़ी कम है लेकिन आ रही है।
0: अच्छा जी। तो सर, मैंने सभी श्रोताओं को आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, और मैं ये आपसे
1: थैंक
0: ये
1: यू।
0: जानना चाहूँगी कि ये जो आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, आज रेबीज डे है, वर्ल्ड रेबीज डे, उस पर हम बात करना चाह रहे थे। तो ये आपने क्या चीज़ की थी, कौन सी रिसर्च जिस पर कि आपको ये अवार्ड मिला है? और रेबीज जो है वो मनुष्यों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि इसका इलाज कभी भी संभव नहीं है, तो इसमें कोई मिथ है या क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़।
1: देखिए, पहले तो मैं वर्ल्ड रेबीज डे पे सबका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने रेडियो पे मुझे दिया लोगों के लिए। और जहाँ तक रेबीज की बात है, ये पशुओं से फैलने वाली बीमारी है जो पशुओं से आदमियों में होती है
0: जी।
1: और पशुओं के काटने से होती है। जितने भी हमारे मैमल्स हैं, जैसे ज़्यादा करके डॉग के काटने से, बिल्ली के काटने से, नेबले के काटने से, मंकी के काटने से, या कोई भी जो जानवर है उसके काटने से होती है। मैक्सिमम ये डॉग के काटने से होती है। तो
0: जी
1: इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो श्रोताओं को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कभी कुत्ता, बिल्ली या नेबला या इस तरह का जानवर काट ले तो जख्म को यदि हम साबुन से झाग बना के 15 मिनट बहते पानी के नीचे धोएं और कोई भी एंटीसेप्टिक या हैंड सैनिटाइजर या आफ्टर शेव लगाएं तो
0: जी
1: 60% रेबीज से बचा जा सकता है।
0: जी
1: क्योंकि बड़े सारे लोगों को ये मालूम नहीं है और वो ये सोचते हैं कि सिर्फ टीके ही इसका इलाज है, वो बाद की बात है।
0: जी
1: लेकिन पहला इलाज तो ये है कि जो घाव है, जहाँ पे काटा है जानवर ने, उसको हम 15 मिनट बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से साबुन से झाग बना के कोई ना कोई उसके बाद एंटीसेप्टिक उस पर लगाएं
0: जी
1: तो 60% रेबीज से बचा जा सकता है।
0: जी
1: फिर दो तरह के इसके इंजेक्शन होते हैं। एक तो वैक्सीन होती है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है, लंबे समय तक वो काम करती है।
0: जी
1: और एक इंजेक्शन ऐसा होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो घाव में लगता है।
0: जी
1: तो वो इंजेक्शन जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं और वो घाव में जब हम लगाते हैं तो वायरस कोई बचा हो घाव में तो उसको वही न्यूट्रलाइज कर देता है।
0: जी
1: तो जो मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला है वो इसलिए मिला कि जो घाव में लगाने वाला इंजेक्शन है वो बहुत महंगा होता था। मतलब कि एक बार का इलाज जो है वो 35-35 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाते थे और कई बार ब्लैक में भी मिल लेना पड़ता था।
0: हाँ जी
1: मिलता नहीं था क्योंकि वो खून ह्यूमन के ब्लड से या एनिमल हॉर्स के ब्लड से बनता है। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ घाव में लगाना जरूरी है उसको और उसको मसल में लगाना जरूरी नहीं है। और उस कारण क्या हो गया कि घाव में बड़ा कम वॉल्यूम उसका लगता है, बड़ी कम दवाई लगती है, तो उसकी प्राइस भी कम होगी। इस तरह से 35 हज़ार रुपये का इलाज जो है वो 350 रुपये आ गया।
0: हाँ जी।
1: और WHO ने इसको रिव्यू किया, WHO ने पूरे वर्ल्ड में इस इलाज को मान्यता दी और उसी पे मेरे को भारत सरकार ने जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: जी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक है इस बात के लिए। वैसे
1: थैंक
0: तो
1: यू।
0: ये काफ़ी साल पहले हो चुका था, लेकिन आज हम जब श्रोताओं को बता रहे हैं तो श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा ये सुन करके, और शायद मुझे लगता है कि कई श्रोताओं को तो पहली बार ये जानकारी मिली होगी कि ऐसा
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी हुआ है। और सर, अब ये जो मिथ है लोगों में कि कहीं कहीं पानी पी लो जा करके, या फिर कई लोग कह भी देते हैं कि अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो फिर पानी की पीने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ खिला देते हैं कई लोग कि हाँ उससे ठीक हो जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि ये मिथ, पहले लोग बोलते थे कि पानी जी मंत्र का लिया तो आदमी को रेबीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 70-80% जो कुत्ते हैं उनमें रेबीज नहीं होती। तो बड़े 5-10% कुत्ते ऐसे हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकती है।
0: जी
1: तो यदि रेबीज डॉग ने काटा है तो इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रेबीज होने की संभावना बड़ी होती है। और ये मंत्र जो हम पानी का कह रहे हैं, पानी दे दिए, कोई चावल के दाने दे दिए, ये सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जरूर देती हैं
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: इलाज नहीं है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, क्या ये इसका इलाज सच में संभव है? जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं ना कि एक बार हो गया तो फिर संभव नहीं. हमने कुछ ऐसी स्टोरीज देखी हैं सोशल मीडिया पे कि कई कई दिनों तक किसी ने अपना बेटा जो है वो अंधेरे कमरे में रखा, और लेकिन उसको हो गया था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब इनको आप घर ले जाइए और ये नहीं अब ठीक हो पाएंगे, लेकिन वो ठीक हो गया कुछ समय के बाद.
1: नहीं देखिए, ऐसा तो हमें कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है जिसमें किसी ने अंधेरे कमरे में बच्चा रखा वो ठीक हो गया. रेबीज का इलाज कोई नहीं है, प्रिवेंशन ही, जो मैंने कहा कि उसको जख्म को धोएं और घाव में टीका लगाएं और जो वैक्सीनेशन अपने आप को करें, वही एक इसकी प्रिवेंशन ही इलाज है. और यदि हो गया तो वो जीवित रहना बड़ा मुश्किल है. उसमें आदमी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, एरोफोबिया हवा से डर लगता है, उसके बाद लाइट से डर लगता है, शोर से डर लगता है. तो सारे चीजें जो हैं वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं और इसलिए उसको जो है जीना मुश्किल है उसका. हाँ, यदि 10-12 केस पूरे वर्ल्ड में ऐसे आए हैं जिनको जो कि जिंदा रहे कुछ टाइम तक, वो इसलिए रहे कि उनको टीके भी लगे थे, सब कुछ लगा था और वो पैरालिटिक रेबीज से रहे. मतलब ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह स्वस्थ थे, वो बेड पे बेड रिटर्न रहे लेकिन थोड़ा टाइम और जीवित रहे. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज ओनली ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट. यदि रेबीज होगी तो कोई इलाज संभव नहीं है.
0: जी डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, रेडियो गुंजन धर्मशाला को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में इसी तरह की जानकारियों के लिए आप उपलब्ध रहेंगे, और जब भी हम आपको याद करेंगे तो आप ज़रूर चाहे फ़ोन के माध्यम से ही हमसे जुड़ जाएंगे.
1: थैंक यू सर.
0: तो श्रोताओं, आपने सुनी ये जानकारी डॉक्टर ओमेश भारती द्वारा. हम चाह रहे थे कि वो अपने खुद अपने मुंह से बताएं बजाय इसके कि हम आप लोगों को यहाँ से जानकारी दें. और डॉक्टर ओमेश भारती ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने वाकई में अपने हाथों की जो लकीरें हैं उस पर यकीन किया. तो चलिए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिर से एक खूबसूरत सा गीत. तो श्रोताओं, सिस्टम ने भी अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं भैया दोबारा से, और हमें फ़ोन कॉल्स आना भी शुरू हो गई हैं. तो एक गीत सुन लेते हैं, फ़ोन कॉल हम लेंगे इस गीत के बाद, या अभी फ़ोन कॉल ले लेते हैं. जी हेलो, तो चलिए कोशिश हमारी जारी है, या तो हमें फ़ोन कॉल आ जाए या फिर हम आपको गीत सुनवाने की स्थिति में आ पाएँ. तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने 35,000 रुपये तक के इंजेक्शन या इलाज को मात्र 350 पर वो ले आए थे. काफ़ी सारी रिसर्च के बाद, उनकी रिसर्च जो है वो 17 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने ये रिसर्च 17 साल तक की, और उसके बाद ये जो इलाज था वो 350 पे सिमट के आ गया है. और अब जो रेबीज़ का इलाज है वो सस्ता भी है. लोग पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं अस्पतालों में, तो वैसे भी इंजेक्शन्स जो हैं वो

0: आज तो फोन कॉल्स की भरमार लगी हुई है भैया, और हम अभी स्थिति में नहीं हैं कि आपका फोन कॉल उठा पाए। थोड़ा सा बस ये गीत ओवर हो जाए, फिर बात करते हैं। ये हमने बात की थी शुरुआत में अकेले चलने की, और ये जो डॉक्टर उमेश भारती हैं, ये भी अकेले ही चल करके यहाँ तक पहुँचे। फोन कॉल लेते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हेलो जी।
1: हेलो नमस्कार, प्रणाम।
0: आवाज आ रही है?
1: बिल्कुल सही थी, बिल्कुल।
0: आवाज आपको सुनाई दे रही है हमारी?
1: जी जी जी, बिल्कुल पूरी तरह जी।
0: अच्छा, आपको दे रही है? अच्छा, वो
1: जी जी, हाँ,
0: इको बैक तो नहीं आ रहा?
1: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल सही है।
0: ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अनिल बोल रहा हूँ जी।
0: अनिल जी, क्या बात करना चाहते हैं आज कार्यक्रम में? स्वागत है आपका सबसे पहले तो।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: जी।
1: पहले तो मैं अपने भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा
0: जी,
1: क्योंकि जिनके बदौलत हम आजादी का सुख भोग रहे हैं आम सभी, उनमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप भी आए। आप अगर इस मंच पे खुले आम बोल रहे हो तो आजादी के बजे से ही बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो अगर हमें आजादी मिली है तो उन्हीं मतलब जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के बदौलत मिली है, और हमें उसको मतलब कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमें सदा ही याद करना चाहिए।
0: अनिल जी, मैं पहले तो आपको दाद देना चाहती हूँ कि आप लगातार शुरू से ही जो कार्यक्रम है ना, बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमने भगत सिंह के बारे में, ज्यादा हमारे पास समय था नहीं, तो हमने बिल्कुल शॉर्ट कम से शब्दों में बताया था, और आपने वाकई में इस बात को जो कहा है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको।
1: जी जी जी, धन्यवाद
0: जी।
1: और उसके बाद मैं आपको एक ही और बताऊंगा
0: जी।
1: देखिए, आप अगर आजादी की बात करते हैं तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमें आजादी दी है, अक्सर दो ही नाम आते मेरे सुनने में तो
0: जी।
1: मैं उनके नाम पे आपको शर्म जग जाहिर करूंगा। अक्सर हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी और नेहरू जी ने आजादी दिलाई है।
0: अच्छा जी,
1: बोलते हैं अक्सर बोलते हैं। पर मैं जो आपके मंच पे एक बात बोलना चाहूंगा कि जो आजादी दिलाने वाले जो लाखों ही ऐसे योद्धा थे कि उनका नाम ही मतलब इस फिल्म में या पिक्चर में आया ही नहीं।
0: हाँ, कहीं जिक्र नहीं है ना।
1: देखिए, हाँ, उनमें लाखों में देखो ऐसी ऐसी कन्याएं थी, आप उनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। देखिए, एक शांति घोष जी थी और एक सुनिधि चौधरी जी थी, उनकी आयु केवल मात्र थी 14 और 15, और ऐसे क्रांतिकारी थे कि जिन्होंने GB स्किपर को मतलब गोली करके शूट किया था।
0: अच्छा, एक बार
1: ऐसे क्रांतिकारी थे, उनका नाम हम आज तक कभी लाइमलाइट में आया ही नहीं।
0: अनिल जी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इन दोनों का नाम जो आपने नाम लिया?
1: जी जी, हम दोबारा सुनिए, शांति घोष और सुनिधि चौधरी।
0: ऐसे और भी बहुत सारे होंगे ना वैसे।
1: हाँ, तो ऐसे जबकि उनकी आयु केवल खेलने की थी, किताबें पकड़ने की थी, वो उन्होंने 14 और 15 साल की उम्र में स्टीफन GB स्टीफन को शूट किया था। तो ऐसे ऐसी कन्याएं थी जिनका नाम हमने आज तक कभी किसी ने उनका जिक्र ही नहीं किया
0: जी।
1: तो ये हमारी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे योद्धा और भी न जाने कितने लाखों थे, और मतलब 8 लाख कुछ योद्धा थे जिनका हम नाम जानते ही नहीं है।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैं चाहता कि हम आजादी के उन सभी एक मतलब हमारे लिए हीरो हैं, हमें सब उन हीरो को याद करना चाहिए। और उसके बाद ये तो है पहला विषय जिसको हमें आपने मतलब आप नहीं किया था। दूसरा विषय ले लेते हैं, आपने बात कर दिया अकेले की।
0: आज अकेले की बात हो नहीं पाई, मुझे लग रहा है एक कार्यक्रम अलग से मुझे करना पड़ेगा इसके लिए अब।
1: जी जी। हाँ। तो उसके सब मैं थोड़ी सी आपको कर देता हूँ रूबरू। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं।
0: हाँ जी।
1: एक होते हैं अंतर्मुखी। हाँ। और एक होते हैं बाहमुखी, जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। और क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मतलब अंतर्मुखी टाइप, मतलब उसी टाइप का आदमी हूँ।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो कितना अच्छा बोल रहे हैं।
1: मुझे भी अपने आप में एकांत ही रहना पसंद है।
0: अच्छा।
1: आइसोलेट में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। आइसोलेट मतलब मुझे बहुत ही बात ही बस से कोई लेना देना नहीं होता हकीकत में।
0: अच्छा।
1: तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अंतर्मुखी में जैसा आनंद है ना, है ना, ज्यादातर लोग वही परेशान होते हैं जो ब्रह्ममुखी है, जिनको बहुत ही बात जितनी वस्तु है उसे लेना देना होता है। तो आदमी जितना जितना अंतर्मुखी रहेगा वो उतना ही मतलब सात्विक रहेगा, अच्छा रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये तो रहे दो। दूसरा हल्का सा छोटा सा लिखते हैं, आपने एक संगीत सुनाया था 1982 का जो यशुदास जी का था, वो बहुत बढ़िया था
0: गीत,
1: यशुदास जी का था।
0: हाँ,
1: जो रविंद्र जिसमें जो रविंद्र जैन जी ने उनको संगीत किया था।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और वो बहुत बढ़िया था। उसके साथ साथ में एक छोटी चीज, अब अगर आपको कभी आपको अपने मंच पे कोई मौका मिलेगा तो आप एक संगीत सुना दीजिएगा जो मेरी का भी पसंद का, एक संगीत मेरी पसंद का है।
0: अच्छा।
1: कभी अगर मौका मिले मतलब उसको मैं आप शायद सुनाना सुना कोई मजबूरी नहीं है,
0: किसी किसी एक, किसी कार्यक्रम में सुना देंगे। आप बताइए।
1: हाँ, मैं बताऊंगा। हर तरफ ये अब यही अफसाने हैं, ये एक
0: राग बिहार दीवाने
1: हैं। हाँ, ये एक राग बिहार उस पर आधारित है। 1973 में बनारे जी ने किया था, संगीत किया था
0: जी।
1: एक क्लासिकल मूवी थी
0: जी,
1: उसपे बेस्ड है।
0: ठीक है।
1: तो ये अगर कभी अगर मौका मिले तो सुना दीजिएगा।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना देंगे जी आपको, किसी और कार्यक्रम में कभी सुना देंगे, और हम यहाँ पे अपने पूरे स्टाफ को भी बता देंगे तो
1: जी
0: आपको सुनवा दिया जाएगा।
1: समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने
1: समय दिया बहुमूल्य समय तो काफी समय देने के लिए आपको धन्यवाद। इन सब करें
0: यशुदास जी का वो जो गीत था वो था ये सुबह सुहानी हो, बीती हुई रात की कहती है कहानी।
1: जी जी जी,
0: है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनवाते हैं आप सभी को एक और खूबसूरत सा गीत।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: ठीक है।

तो श्रोताओं, अतरंगी रे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब हम चल रहे हैं जापान के आईची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स की ओर। जी हाँ, एशियन गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। और 27 सितंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुल 37 पदक, 4 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 17 कांस्य जीत करके पदक तालिका में मजबूती से बना हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हरा करके देश को इस सीजन का पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। और भारतीय महिला टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में 37-34 से हरा करके स्वर्ण पदक भी जीता है। पुरुष कबड्डी टीम ने भी कमाल का खेल दिखाया है और ईरान को 40-34 से हरा करके गोल्ड पर कब्जा कर लिया। कमलजीत और सुरुचि सिंह शूटिंग की इस जोड़ी ने 10 मीटर एयर फिल्टर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में न केवल गोल्ड जीता बल्कि एशियन रिकॉर्ड्स की बराबरी भी की है। और सावन बरवाल एथलेटिक्स में इन्होंने पुरुषों की मैराथन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता है। 1982 के बाद मैराथन में ये पहला भारत का पदक है। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट के खिलाड़ी हैं। भारत के स्टार गोला फेंक खिलाड़ी ने 20.64 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह एथलेटिक्स में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में बेहतरीन रफ्तार दिखाते हुए सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। अनाहत सिंह और अभय सिंह स्क्वैश, अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में इतिहास रचते हुए पहली बार देश को रजत दिलाया और अभय सिंह ने भी पुरुष सिंगल्स में सिल्वर जीता। अंसी सोजन लॉन्ग जंप और सर्वेश कुशारे हाई जंप की बात करें तो एथलेटिक्स के इन दोनों खिलाड़ियों ने क्रमशः लंबी कूद और ऊंची कूद में शानदार प्रदर्शन करके रजत पदक जीते हैं। और मीराबाई चानू कहां पीछे हैं वेट लिफ्टिंग महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में देश को रजत पदक दिलवाया है। रोशिबीना देवी वुशु महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा इवेंट में लगातार तीसरा महाद्वीपीय पदक, रजत पदक इन्होंने भी जीता है। और कांस्य पदकों की बात भी करेंगे। फिलहाल हमारा जो देश है वो कमाल कर रहा है। और सुनते हैं साथ साथ में ये गीत।

दुनिया बस इसी तरह से इंडिया चकती रहे और हम देखते रहें, खुश होते रहें। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानी और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कांस्य पदक विजेताओं के नाम अगर किसी का रह जाए तो प्लीज आप क्षमा कर दीजिएगा मुझे। चंबा की सीमा कुमारी एथलेटिक्स में इस बेटी ने फटे जूते के साथ दौड़ करके महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है और 16 साल का जो सूखा था वो खत्म किया। पायल चौधरी एथलेटिक्स महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक जीता है। और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं सभी ने कांस्य पदक जीता है, मनप्रीत कौर शॉटपुट और बर्निका इलानगोवन पोल वॉल्ट में। और बर्निका पोल वॉल्ट में एशियन गेम्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जोशना चिन्नप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार स्क्वैश में मिक्स्ड डबल में देश की झोली में इन्होंने कांस्य पदक डाला। दिया चितले और मानुष शाह टेबल टेनिस में मिक्स डबल में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक सुरक्षित किया है। तो श्रोताओं, नागोया के मैदान पर हमारे खिलाड़ी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं और शूटिंग से लेकर के एथलेटिक्स और कबड्डी से लेकर के क्रिकेट तक भारत के शेर और शेरनियां हर तरफ छाए हुए हैं। तो आज का ये दिन, ये प्रोग्राम इन सभी जांबाज खिलाड़ियों के नाम।

0: कुछ करिए।
1: जी हाँ, करके तो दिखा दिया है भाई, और भी बहुत कुछ करने का वक्त है। देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि मैंने पहले कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था ना कि पहले अकेले कदम उठाना होता है और फिर छा जाना होता है पूरी दुनिया पर, क्योंकि जब आप अकेले चलेंगे ना, उसके बाद ही आपके साथ काफिला बनता चला जाएगा, अगर आप सही होंगे तो। वाकई में अगर आप कुछ चकना चाहते हैं तो एक कदम तो चकना ही पड़ेगा, माने कि उठाना पड़ेगा। लड़ती पतंग। और ये बात हम कह रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी सुनने वालों को, और बाहर भी जितने भी हैं हमारे प्रेमी, अपने देश के प्रेमी, जिन्हें अपने देश से प्यार है, उन सभी के लिए ये गीत।

है ना, तो कहीं पर भी रहो, चाहे कश्मीर चाहे कन्याकुमारी, लेकिन हमेशा अपने देश के बारे में ज़रूर सोचो। और वो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इवेंट में ही पार्टिसिपेट करें, किसी खेल में हम हिस्सा लें, भाग लें और अपने देश को रिप्रेजेंट करें तभी हम जो है सच्चे देशभक्त कहलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, बस अपने कामों को ईमानदारी से करते चले जाएं और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अक्सर हम ये बातें यहाँ से आप तक पहुँचाते ही रहते हैं, है ना श्रोताओं। कई बच्चों का सपना होता है कि हम फौज में भर्ती हो जाएं या फिर किसी एक ऐसी संस्था में चले जाएं जहां पर कि हम ये दिखा पाएं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी सही है, वो भी वाकई में कर तो रहे ही हैं। जो फौजी होते हैं वो अपनी नींदें वार देते हैं, उनका समय का कोई पता नहीं होता, 24/7 काम करते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर फौज में नहीं है तो हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। हम जैसे जो भी काम कर रहे हैं, हमेशा कहती हूँ ना मैं आपसे, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं, वहाँ पर आप ईमानदारी बरतेंगे, सामने वाले की मदद करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो आप देश सेवा या देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने अकेलेपन की बात कही थी, तो आज के दौर में कोई ये सोच ले कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो ऐसा नहीं है। इस बात का ख्याल मुझे आया था जंतर मंतर पर, जो हमारे एक दामित गहलोत करके एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फूड मिलावट और फूड माफिया के खिलाफ लड़ते लड़ते भूख हड़ताल पर बैठे थे वो। अभी हाल फिलहाल में ही उन्हें उठा करके लेकर जाया गया है, क्योंकि शायद बिना अनुमति के बैठने की इजाज़त किसी को होती नहीं। लेकिन 21 दिनों की 700 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके पहुंचे थे वो वहां पर, जिसके कारण उनके पैरों में छाले भी पड़ गए। और जैसा मैंने पहला वीडियो उनका देखा था जो सोशल मीडिया पर आया था, तो वो बिल्कुल अकेले थे और वहां पर जंतर मंतर में बाहर पीछे जाकर के किसी पेड़ के नीचे उन्होंने शरण ली और वहीं पर वो अपना चद्दर डाल करके बैठ गए। और जैसे ही लोगों ने वहां पर सोशल मीडिया पर उन्हें देखा और धीरे धीरे करके लोग आते चले गए, उनके साथ जुड़ते चले गए, अब वो मुहिम शायद इतनी बड़ी हो गई कि पुलिस को या सरकार को हस्तक्षेप उसमें करना पड़ा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो वो समस्या लेकर चले हैं, जिस बात के लिए वो वहाँ पर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, केवल पानी पे ही गुजारा कर रहे थे, तो इस बात के लिए भी अब प्रशासन थोड़ा सा जागेगा और कुछ सख्त कानून जो हैं वो फूड सेफ्टी के लिए भी बनाए जाएंगे। जैसे कि फूड अडल्ट्रेशन बहुत हो रही है हमारे पूरे देश में, तो उस पर सख्त कानून और भी सख्त बनाने की ज़रूरत है। वैसे तो हैं कानून, लेकिन उनके ऊपर निगरानी कौन कर रहा है, कौन ये देख रहा है कि अगर कहीं सड़क के किनारे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, बिक रही हैं, तो उन में जो स्वच्छता है वो है या नहीं है, कुछ उसमें मिलावट तो नहीं है, या मार्केट से ही बाजार से ही जो हम चीज़ें खरीद करके ला रहे हैं उसमें कितनी कर मिलावट है, इस पर निगरानी किसी की नहीं है। केवल कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन कानूनों का पालन आखिरकार करते कितने लोग?

और इसी तरह से अकेले चलने के की बात करूं तो अभी अभी हाल फिलहाल में ही मैंने बहुत बार पहले भी बातें की हैं इस बारे में, बिट्टू तबाही है ना, सोशल मीडिया पर इतने फेमस हुए इन्फ्लुएंसर बन गए हैं वो, तो नदी रक्षक भी उन्हें कहा जाने लगा है। अकेले ही उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, जज्बा उनका भी कमाल है, चाहे वो बड़े पढ़े लिखे नहीं लेकिन देश के लिए कुछ तो करना चाहते हैं। और अब वो ब्यावरा अजना

नदी से गंगा पहुंच गए, यमुना को उन्होंने साफ करने का बीड़ा उठाया। ऐसे ही तुकाराम मुंडे हैं सिंघम आईएएस, जिनकी कहानी आप सभी जानते हैं। और दशरथ मांझी द माउंटेन मैन को कौन भूल पाया है, अकेले ही उन्होंने हथौड़ी छेना उठा करके पहाड़ में एक रास्ता बना दिया था, मतलब कि सुरंग बना दी थी। बिहार गया जिला के गहलौर गांव के एक बेहद गरीब मजदूर जिन्हें कि रास्ता नहीं था और उनकी जो पत्नी थी वो बीमार थी और फागुनी देवी का निधन हो गया था केवल इसलिए कि पहाड़ सामने खड़ा था, रास्ता नहीं था, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, तो उन्होंने पहाड़ से ही बदला लेने की ठान ली। ऐसी ही एक कहानी है असम जोहराट के रहने वाली साधारण आदिवासी यादव पायेंग की। उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अकेले ही ब्रह्मपुत्र नदी के एक रेतीले द्वीप पर भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों सांपों और जीवों को मरते देखा तो उनका दिल पसीज गया था और उन्होंने उस बंजर रेतीली जमीन पर पौधे लगाना शुरू कर दिया। पिछले 40 सालों से अधिक वर्षों से वो वहां पर रात दिन पौधे लगाते आ रहे हैं और अकेले प्रयास का नतीजा आज मलाई फॉरेस्ट के रूप में सामने है, क्योंकि 1360 एकड़ में फैला एक घना जंगल बन चुका है जहां पर अब बाघ, गैंडे और हाथी भी रहते हैं। और एक और नाम है कलमाने थिम्मक्का का, कर्नाटक की रहने वाली एक बेहद गरीब महिला जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। समाज के तानों से दूर उन्होंने प्रकृति को ही अपनी संतान मान लिया और उन्होंने

और उनके पति हुलकित और कटूर के बीच एक बंजर हाईवे के किनारे बरगद के पौधे उन्होंने लगाने शुरू किए और पानी की कमी के बावजूद वो मीलों पैदल चल करके घड़ों में पानी लाती और पौधों को सींचती और उन्होंने अकेले दम पर सैकड़ों विशालकाय बरगद के पेड़ उगाए। 100 साल से अधिक की उम्र में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। श्रोताओं, कैसी लगी आपको आज की ये अकेलेपन की कहानियाँ, जिसके बाद सारा कारवा उनके साथ हो गया और आज हम उनके नामों के बारे में, उनके कामों के बारे में यहाँ रेडियो से आप सभी से बता रहे हैं। चलिए हम भी कुछ ऐसा ही कमाल करें और अपनी जीवन में अपना भी कुछ नाम करें। एक मुहिम शुरू हुई है क्लीन धर्मशाला के नाम से, उसके साथ जुड़िए और कुछ ना कुछ तो कीजिए। ज्योति पठानिया को भी इसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दे दीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मुझे मिला है शशि से और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चली जाओ। मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना ये। भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा
5: है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है, मैं स्वागत करता हूँ। मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही मोटिवेटेड, अपने आप में एक मोटिवेशन है और दूसरे लोगों को भी ये बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं अलग अलग कॉजेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान है, मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए उनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है प्रीति मस्के। ये पुणे की रहने वाली हैं और मिडिल एज में आके अपनी फैमिली और अपने जो जॉब है उन सब से हट के इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा कि इन चीज़ों को तो मैं करूँगी ही, सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इन्होंने इस सोच को लेके साइकिलिंग स्टार्ट करी ताकि फिटनेस को बढ़ावा दे सके। तो साइकिलिंग करने के साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारे कॉजेज भी चुने। अपनी हर एक साइकिल की ट्रिप पर वो एक कॉज को प्रमोट करती हैं और लास्ट टाइम इन्होंने जब वो साइकिल की जो राइड वेस्ट टू ईस्ट जो की थी, मतलब भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक जो अपनी साइकिल राइड की थी, उसमें उन्होंने अंगदान को प्रमोट किया था, अंगदान के ऊपर जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद, थैंक यू।
2: प्रीति जी, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया हमारे श्रोताओं को कि आपने साइकिल राइड चुनी लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर करने के लिए, और उसके साथ ही आपने अलग अलग कॉजेज भी चुने जिससे उनके ऊपर जागरूकता फैलाई जा सके। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप क्या करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है एंड कैसे इन सब में आप आई।
3: मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ, जो अपना डे टू डे रूटीन करती थी और फैमिली देखती थी, हस्बैंड को उसके काम में मदद करती थी। लेकिन ये करते करते ना मैं बहुत बोर हो गई थी, ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो रही है। इतनी निराशा आ चुकी थी ना कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तब भी मुझे ये मिला रनिंग और साइकिलिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और जिसमें एक के बाद एक मुझे मौके मिलते गए और जो बेहतरीन कर सकती हूँ वो उसमें मैं कोशिश करते गई और आज 3-4 गिनीस रिकॉर्ड करते हुए, अलग अलग टाइप के मैसेजेस स्प्रेड करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और अभी नया कुछ करने का ठान के इनसे मिलने आए हैं।
2: तो प्रीति जी, आप साइकिलिंग एंड रनिंग में करते क्या हैं? आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं या किसी स्टेट या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्रीलांसर आप अपना लक्ष्य खुद चुनते हैं, और किस तरह से आप ये चीज़ें करते हैं?
3: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन जी, ये मेरा शौक है, पैशन है जी। कि साइकिलिंग करते हो, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हुआ, मनाली टू लेह साइकिलिंग या रनिंग या वेस्ट टू ईस्ट साइकिलिंग, ये सारे ये रूट है जो गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आते हैं। तो चांस मिला है तो वो रिकॉर्ड्स करते करते क्या कर सकती हूँ सबके लिए, मतलब मुझे जो सोसाइटी से मिल रहा है वो कैसे बैक दे सकती हूँ मैं, ये सोचते हुए एक कॉज लेके चलती हूँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरा रहता है।
2: आपने जैसे गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात की, तो आपने अपने नाम पर कोई रिकॉर्ड दर्ज किया?
3: ये सारे रिकॉर्ड प्रीति मस्के के नाम पे है।
2: कौन से सारे?
3: मनाली टू लेह साइकिलिंग है मनाली टू
2: ले साइकिलिंग कितने कुछ घंटे की अंदर की?
3: ले मनाली साइकिलिंग है वो 55 घंटे में हुआ था जो गिनीस रिकॉर्ड बन चुका, जो मुझे गिनीस ने 60 घंटे दिए थे। देन वही रूट हमने इमीडिएट एक महीने बाद किया रनिंग से, तो वो हुआ था गिनीस ने दिए थे 6.5 दिन, जो हमने 4 दिन 22 घंटे और 9 मिनट में किया था।
2: तो कितने किलोमीटर था ये रूट?
3: यह है 430 किलोमीटर,
2: 430 किलोमीटर,
3: और वो भी अल्टीट्यूड पे।
2: और इसमें रुक सकते हैं, कंटिन्यूअसली रनिंग होती है?
3: नहीं, रुक सकते, अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो, ले उनके सारे रूल्स फॉलो करके
2: उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरी करनी है।
3: हाँ, पूरी।
2: ओके, तो आपने उनकी टाइम लिमिट से पहले ही हर रिकॉर्ड कर दिया और अपने नाम कर लिया। जी, ओके। सो इस तरह की कितनी जो रिकॉर्ड्स हैं, कितनी राइड्स आप कर चुके हैं रनिंग या साइकिलिंग में?
3: ऐसे कर चुके तो बहुत 5-6 है, लेकिन गिनीस होके आए हैं ऐसे 3 है, चौथा आएगा, और देखते हैं लोगों की ऐसे
2: 4 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं, और वैसे आपने 5 या 6 किए जी। सो जैसा मैंने श्रोता आपको बताया था कि इन्होंने अंगदान के ऊपर भी जागरूकता अपनी लास्ट रूट में फैलाई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रीति जी बताइए कि अंगदान क्यों, मतलब सडनली अंगदान के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली और कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं साइकिलिंग के थ्रू अंगदान के ऊपर भी जागरूकता बढ़ा सकती हूँ लोगों में?
3: रिकॉर्ड तो मेरे लिए थे, लेकिन उसमें मैं खुद के रिकॉर्ड बनाते बनाते ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मुझे सोसाइटी से मिल रहा है मैं वापस दूँ। तो वो सोचते सोचते मुझे ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रिबर्थ फाउंडेशन वाले मिले, उन्होंने उनसे बात हुई तो पता चला कि मैं मेरे रिकॉर्ड के साथ ऐसा कुछ मैसेज लेके जा सकती हूँ। फिर हमारी बातचीत हुई और मैं कॉज से जुड़ गई। और ऑर्गन डोनेशन इसलिए है क्योंकि ऑन रूट ही, मतलब रास्ते पर ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहीं पे हमको लोगों को समझाना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो मुझे लगा था दिस इज़ द बेस्ट कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं से वो कॉज लेके चलते हैं।
2: बिल्कुल श्रोताओं, मैं आपको बताऊँ कि हमने अभी इससे पहले जितने लोगों से बात करी है या जितने लोगों के साथ हमने शोज किए, सब में एक कॉमन फैक्टर था कि वो किसी ना किसी तरह से ट्रांसप्लांट और अंगदान से जुड़े हुए थे, या तो उनके परिवार में किसी को ज़रूरत थी, या फिर उन्होंने अपने परिवार में किसी के अंगदान किए थे, या फिर वो डॉक्टर थे या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर थे, तो वो किसी ना किसी तरह से अंगदान से जुड़े हुए थे, तभी उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन प्रीति जी पहली वो शख्स हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड अंगदान या अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने खुद से इन चीज़ों से लिंक ना होते हुए इस टॉपिक को चुना, तो प्रीति जी इसका तो हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लेवल पर इस चीज़ को चुना और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अगर हम नंबर्स में बात करें तो करीब कितने लोगों को आप अंगदान के बारे में जागरूक कर पाई हैं अभी तक?
3: जैसे मुझे बताया गया, हमने वेस्ट टू ईस्ट अभी किया था अंगदान का मैसेज लेते हुए, तो हम लोग बाय काउंट मुझे पता था कि 8.5 करोड़ लोगों तक पहुंचे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग 17 करोड़ लोगों तक पहुंचे, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, वहाँ पर लोगों को ये जागरूकता अलग अलग माध्यम से पहुँचाई। और मैं चाहती हूँ कि ये कार्य मैं और बड़ी लेवल तक आगे तक लेके जाऊँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति जी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों हम थोड़ी देर में वापस आते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रीति मस्के जी से, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और 4 बार हैं। सो हम बात कर रहे थे उनकी जर्नीज के बारे में कि कैसे उन्होंने अंगदान के मैसेज को अपनी जर्नी के थ्रू फैलाया। सो उन्होंने ब्रेक में जाने से पहले प्रीति जी आपने बताया कि 17 करोड़ लोगों को आपने इसके बारे में जानकारी दी है, तो वेस्ट टू ईस्ट रूट आपने कहा, तो अगर हम सिटी की बात करें तो किस सिटी से किस सिटी तक और इसमें कितनी टोटल सिटीज आपने कवर करी?
2: सिटीज़ तो काफ़ी कवर की। ये शुरू हुआ था वेस्ट मीन्स पाकिस्तान बॉर्डर कोटेश्वर गुजरात का, और ये ख़त्म हुआ किबीथू अरुणाचल प्रदेश जो जिसको हम चाइना बॉर्डर बोलते हैं
1: जी।
2: ये था 3955 किलोमीटर का जो हमने तय किया सारी मुश्किलों के बावजूद 13 दिन 18 घंटे और 38 मिनट में, और ये गिनीज रिकॉर्ड बना।
1: 13 दिन 18 घंटे 38 मिनट
2: हाँ, ये 8 स्टेट में से गुजरे थे हम
1: जी।
2: सबसे चैलेंजिंग तो उसमें था आसाम और अरुणाचल, जो अपने एरिया में किसी को भी सुन के भी लगता है आसाम और अरुणाचल कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें उसके बारे में सुनते हैं।
1: 13 घंटे में तो शायद इंडियन रेलवे भी नहीं पहुंचती दिल्ली से उनका भी टाइम मतलब, जबकि वो कंटिन्यू रन करती हैं। तो आप भी कंटिन्यू रन करती थी या कंटिन्यू साइकिलिंग करती थी या फिर बीच में ब्रेक लेती थी? और अगर ब्रेक लेती भी थी, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितने घंटे तक आप ब्रेक लेते हो और उसके बाद कंटिन्यू करते हो अपनी जर्नी?
2: ये जो अभी वाला सफ़र रहा वो मिनिमम 17-18 घंटे साइकिल चली, और मैक्सिमम मेरा क्रू बताता है कि 24 घंटे भी चली, मतलब वो बोलते हैं 27 घंटे नॉनस्टॉप चली थी जिसमें खाने का ब्रेक ऑब्वियस था, बट बिना सोए वाला 27 घंटे भी एक बार चली थी, लेकिन बोलते 27 घंटे नहीं है तो 24 घंटे हम चले थे।
1: मतलब हम ये मान लें 24 घंटे कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक आपने कंटिन्यू साइकिलिंग करी। तो जैसे मैं भी क्यूरियस हो गया हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार सिक्योरिटी का इशू होता है, तो अननोन स्टेट्स रहते हैं, अननोन जगह रहती हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आपने सामना किया सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, या क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं
2: सुनते
1: और
2: थे।
1: आपने बताया कि आप नाइट में भी साइकिलिंग करते हो अगर आप थके नहीं होते तो, दिन में रात में आपके लिए दिन रात कुछ नहीं है।
2: हाँ।
1: तो जी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हुआ आपको, कहीं डर लगा आपको किसी एरिया से गुजरने में? कोई बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी एरियाज रहते हैं जो बदनाम रहते हैं, यहाँ पर लूटपाट होती है, यहाँ पर परेशान किया जाता है।
2: ऐसे हर एक रिकॉर्ड में कोई ना कोई एरिया आता है जहाँ पे लोग बताते हैं, लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं आया है, क्योंकि रिकॉर्ड से सपोर्टेड है तो ऑफिशियल्स और क्रू चलते हैं
1: जी,
2: जो ये रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करते रहते हैं, तो दैट्स वाई ये भी हो सकता है, तभी मैं दिन रात परफॉर्म कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, हर जगह पे क्रू भी बोलते हैं कि आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, ये एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है
1: जी।
2: ऐसा बिहार में हुआ था, आसाम में भी बहुत सारे क्षेत्र है वहाँ पे सुना था, लेकिन ऐसा मुझे एक्सपीरियंस तो कभी नहीं आया। लेकिन लोगों का तो रहता है कि ये वाला एरिया है ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे आतंकवादी होते हैं, लूटमार वाले होते हैं, जानवर होते हैं, जंगल होते हैं, ऐसे बहुत सारा सुनने में आता है।
1: और आप जिन जिन शहरों से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में?
2: हाँ, आपकी जो भी है सारे लोग हेल्प करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में ये होता है कि आप कंटिन्यू चलोगे तो लोग तो चाहते हैं आपसे मिलना या एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो। बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए वेट करते रहे या आप गए और हम आ चुके थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए तब एक ही टारगेट होता है। लेकिन सारा होता है, मेनली मेरे लिए था मनाली लेह साइकिलिंग और रनिंग, ये आता है एरिया अपने आर्मी के अंडर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पर सपोर्ट किया था, इसलिए ये दोनों सबसे मुश्किल वाले अल्टीट्यूड वाले एक्सपीडिशन सबसे आसानी से हम कर गए, पता भी नहीं चला था। सो होता है हर जगह पे आपके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई,
1: जब आपके सपोर्ट के लिए आर्मी खड़ी हो तो फिर किस चीज का डर?
2: सोचा नहीं था, इट वाज सरप्राइजिंगली मिल गया, बट आई एम फॉर्चुनेट कि ये मौका मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम अंगदान के बारे में वापस आए तो आपने इसके बारे में क्या फील किया, इस अंगदान के बारे में, कि आपने इतने लोगों को अवेयर किया, इतने लोगों से बातें करी होंगी, आपने मिले होंगे, सबके एक्सपीरियंस जाने होंगे, जो एक्सपर्ट हैं आपने उनसे भी बातें की होंगी, तो अगर आपका व्यू देखें ओवरऑल अंगदान के ऊपर, जागरूकता के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेनली मैं जितना समझ रही हूँ ना, उतना पता चल रहा है कि अपने पास इतना सब कुछ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए बाकी लोग जिनको जरूरत है वो इस चीज से वंचित है
1: जी।
2: तो ये अंगदान का पहले तो लोगों को पता चले, फिर उसके बारे में अवेयर हो तो लोग इन्वॉल्व होना शुरू होंगे
1: जी।
2: सो पहले इसी के ऊपर काम करते हैं कि अवेयरनेस, ये जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जब जरूरत है तभी हम उठे, मतलब मेरे रिलेटिव्स को, मुझे या मेरे दोस्तों को जरूरत है तभी हम इसके बारे में क्यों बोले, अभी से हम इसके बारे में बात करें, उसके ऊपर काम करें जब बाकी लोगों को जरूरत है और हम कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हर एक जन सोचेगा ना तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए मैंने आपका एग्जाम्पल इस पॉइंट पर दिया कि आप एक लौती ऐसी हैं पर्सन हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे इसके आगे पीछे का कोई रिलेशन नहीं दिखता, फिर भी आप इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। सो प्रीति जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में आके हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी 2 मिनट के ब्रेक में आते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस शो में। हम बात कर रहे हैं प्रीति मस्के जी से, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और अपनी अगली जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो प्रीति जी, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस के ऊपर, तो आपने बताया कि लोगों को इससे अंगदान से तब नहीं जुड़ना चाहिए कि जब उनके घर में किसी को ज़रूरत हो या कोई पेशेंट है जिसके उन्होंने अंगदान किए हों। इन सब कारणों के बिना भी खुद से बात करनी चाहिए इनके ऊपर। तो अगर आपका एग्जांपल दिया जाए कि आपने ऐसा ही किया, तो कभी आप ऐसे लोगों से मिली हैं जिनका इससे लिंक ना हो फिर भी वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं?
2: मैंने इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर यह करना शुरू किया। मैंने जिनका जिक्र किया था लास्ट वाले रिकॉर्ड में, जिनके साथ काम किया था रिबर्थ फाउंडेशन, उसमें से एक भी मेंबर ना कभी उन्होंने किसी को ज़रूरत थी उनके फैमिली मेंबर में या उनको इसीलिए शुरू किया, बल्कि वो लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। तभी मुझे लगा था कि अगर ये ज़रूरतमंद नहीं है या ना डोनर है ना रिसिपियंट है फिर भी काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उन्हीं के कारण है। तो यही लोग सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ, हम एक कदम उठाते हैं लोगों को मदद करने के लिए।
1: अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इसको अंगदान को लेके?
2: अगले महीने मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रही हूँ।
1: कश्मीर टू कन्याकुमारी? हाँ। वर्टिकल में पूरी इंडिया
2: को? हाँ, जो पहले कर चुकी हूँ, अभी कम से कम टाइम में रिकॉर्ड के लिए
1: एक बार आप कर चुकी हूँ।
2: कर चुकी हूँ।
1: वो कितना, क्या टाइमिंग थी उसकी वो, जिसमें आपने फिनिश किया था?
2: ये नॉन सपोर्टेड था इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए, 2019 में सबसे पहला एक्सपीडिशन था, और वो मैंने 17 दिन 17 घंटे में हमने किया था ग्रुप से, और अभी जितना मिनिमम हो सके
1: खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी में।
2: हाँ, ऐसा बोल सकते हो।
1: और इसमें कौन से कॉस्ट को आप सपोर्ट करने की
2: ऑब्वियस
1: कोशिश कर रहे हैं?
2: ऑर्गन डोनेशन ही है अभी तो, ये मेरी लाइफ से जुड़ चुका है। मैं जहाँ भी जब भी जाऊंगी, मतलब जो कुछ भी करूंगी।
1: ऑर्गन डोनेशन से पहले कॉजेस चेंज होते थे, लेकिन जब ऑर्गन डोनेशन आया तो उसके बाद अब वही मेन चीज है,
2: क्योंकि यहाँ पे इसमें करने जैसा बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल, ये एक तरह से हर चीज का अपने अंदर कवर कर लेता है। अगर आप बात करें कि अदर हेल्थ फैक्टर्स की, कि चलो अंगदान की नौबत ही ना आए, तो अगर हम फिटनेस को प्रमोट करेंगे तो अंगदान की नौबत ही नहीं आएगी, तो एक तरह से आप वो भी सपोर्ट कर रहे हो। अगर अंगदान की नौबत आ गई है तो आप अंगदान लोग ज्यादा से ज्यादा करें उसके लिए जागरूकता पर काम कर रहे हो, और जिन लोगों ने अंगदान करवा लिया है उनके लिए भी एक तरह से आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि एक पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है इनसे, वो इतना कर सकता है जब इस कॉज को प्रमोट करने के लिए। तो जिन लोगों को ऑलरेडी अंग मिले हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, एक नई ज़िंदगी उन्हें मिली है, तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एक तरह से तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जी। ओके, तो प्रीति जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे श्रोताओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहती हों फिटनेस पर, अंगदान के ऊपर, या अंगदान से जुड़े हुए जो भ्रांतियाँ हैं आपने समाज में सुनी होंगी, तो उनके ऊपर तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एक तो है, पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा बहुत काफ़ी है, जिससे सच में नौबत ही नहीं आएगी कि हमको रिसिपिएंट होने की।
1: अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं प्रीति जी, जब आपने ये बात कही पहली कि पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम लगा लो, निकालो, तो मैं भी डॉक्टर हूँ और मैंने कई लोगों को ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप उनसे बोलते हैं कि आप कसरत करें या आप थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो लोगों को ये लगता है कि हम उनके मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं, और जो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि टाइम इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन।
2: यस,
1: मतलब अगर आपको सुबह नहीं उठते बनता, बिल्कुल मत उठिए, आप बिल्कुल सुबह वाली कसरत मत करिए, वो अच्छी है सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अलावा किसी और टाइम में कर रहे हो तो वो फायदेमंद नहीं रहेगी। आपको अगर रात को 10 बजे टाइम मिलता है, सोने से पहले आधा घंटा अपने आप को दें, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा योगा भी कर सकती हैं आप, या फिर एक सिंपल वॉक।
2: हाँ,
1: 5-6 हज़ार स्टेप्स की एक सिंपल वॉक भी आप करें तो बहुत सारी चीजें आपकी, आप 15 दिन के अंदर खुद के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखेंगे। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा किसी ने कसरत करने की बोल दी, अब सुबह कौन उठाएगा, मुझसे तो नहीं उठा जाएगा। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रात को 12 बजे टाइम मिलता है, आप तब कर सकते हो।
2: और मैं ना और वही किसी आप जो फिटनेस शुरू करोगे ना उससे अपने आप टाइम मिलेगा
1: जी,
2: क्योंकि ना आप जो फास्ट हो जाओगे ना बाद में दिन भर सुबह के आधा घंटे से कसरत से, वो टाइम आपका पूरे दिन का 1 घंटा से ज्यादा बचाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि अपने आप वो फास्टनेस अपने आ जाता है
1: जी,
2: और पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि पूरा दिन अपन अगर अपने टेंशन के बारे में, काम के बारे में सोचेंगे, फिटनेस में कोई भी फिटनेस हो या शौक हो उसमें आप अपार्ट फ्रॉम सोचते हो, वो जो टाइम होता है ना वो आपको एक रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस दे जाता है लाइफ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अंगदान के बारे में कुछ कह रही थी,
2: तो यही है कि इसीलिए आप मेन फिटनेस करो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी पड़ी तो सबके लिए सोचना शुरू करोगे ना तो आपके लिए अपने आप सोचा जाएगा। तो हम क्यों सोचे, हमारे घर में किसी को जरूरत नहीं है, दोस्तों को नहीं है, ये बात छोड़ दो। सिर्फ हम जहाँ पे है ना वहां से हम क्या दे सकते हैं, इस बारे में सोचना शुरू करोगे ना तो कम से कम उसके बारे में बात करो, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में, या किसी को जरूरत है उसको हेल्प करो, या जो दूसरे को हेल्प कर रहा है उसको सपोर्ट भी करो ना, तो भी वो बहुत बड़ी चीज होती है।
1: और जितनी ज्यादा हम बात करेंगे उतनी ज्यादा भ्रांतियां खत्म होंगी, क्योंकि अक्सर हम लोग कोई भ्रांति ऐसी सुनते हैं किसी के मुंह से तो हम लोग वो अपने तक रख के बैठ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते, तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा कुछ सुन रखा है तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, या फिर आप हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम उन भ्रांतियों को तोड़ेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। तो प्रीति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई।
2: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, ये थी प्रीति मस्के जी, जिन्होंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आमतौर पर लोग जब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सोचते थे कि अब तो यही हमारी लाइफ है और बस घर गृहस्थी में ही जुटना है, तो प्रीति जी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वो चीज़ तो कहीं गई नहीं है, वो चीज़ तो आप तब भी कर सकते हो लेकिन समाज के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कंपनीज़ की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे एक इंडिविजुअल की भी CSR पॉलिसी होनी चाहिए कि आप समाज से जितना भी कुछ लिया है आपने आज तक उसको वापस क्या दे रहे हो। तो मैं आप लोगों से सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि प्रीति जी जैसे समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही हैं, हम सभी को भी कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है अंगदान, आप कोई और चीज़ टॉपिक भी उठा सकते हैं और किसी ना किसी रूप में समाज के प्रति थोड़ा सा जागरूक बने, समाज के प्रति थोड़ा सा उत्तरदायी बने। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की सुरक्षित भी होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं आज के शो में आपसे विदा लेता हूँ, एंड अगली बार हम जल्दी से हाजिर होंगे आपके सामने एक नई हस्ती के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा
5: है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले?
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं।

0: लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
1: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
0: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
2: यूर अ जीनियस।
0: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
3: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
4: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
5: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
7: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
7: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
7: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
8: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
1: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
2: देख पवन आ गया।
3: पवन वहाँ क्यों
2: बैठा है? तुझे उसे टीबी है।
3: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
3: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मेरी जॉब लग गई।
1: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
2: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
3: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
2: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
3: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
2: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
4: यूर अ जीनियस?
2: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ।

0: को लगता है ना ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता श्री राम रावण से यही कहते पत्नी को ले गए कोई बात नहीं मैं तो नहीं लड़ सकता मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है मुझे जवाब देना आता है पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर जवाब देंगे।
1: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहना है 2 से 3 बजे तक। कने रोजाना तुहां सारे इस कार्यक्रम जो सुन देन माटी दी महक कार्यक्रम दा सफर है रोजाना तुहां 2 से 3 जड़े से इस कार्यक्रम जो सुन देन। कने कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तुहां सारे भी इस कार्यक्रम च अपनी पसंद दे जड़ा पहाड़ी गीत हैं या लोक गीत हैं से इस कार्यक्रम च सुन सकदे। कने इस कार्यक्रम दी जड़ा खासियत है से है कि पहाड़ी जड़ा बोली है पहाड़ी बोली च ही जड़ा गलबात है से अहां करदे न। कने तुहंदी पसंद दे जड़ा गीत हैं सभी तुहां तक पहुँचांदे न। गीत सुनने वास्ते तुहां जड़ा से स्टूडियो दा नंबर जड़ा से नोट करी लिया क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई तय कने श्रोता अहां कने जुड़ चुके न कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद
0: जी। ता तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी?
1: दाड़ी के बोला दे नाम दे नाथ है
0: जी। ता मेघना
1: जी बरखा लगी हो
0: जी? मेघना जी दाड़ी जिहड़े से बरखा लगी हो?
1: हां जी
0: जी। ता मौसम कुथी ना कुथी अपनी जेड़ा करवट है से बदला दा ना जी?
1: बदला दा बिल्कुल
0: जी। कहीं तो वैसे भी बरखा दी जरूरत है भी क्योंकि कुथी कुथी जेड़ा है से तान नी निस रहे ना अली।
1: अच्छा कुथी पक्की भी गई हो?
0: जी कुथी पक्की भी गई हो तिने धुप्पा दी जरूरत है कने जिथु तान नी अली निस रहे हो तिने यो तो बरखा दी जरूरत है। थोड़े देर परेशान जैसे जरूर हुए थे ना जी? क्योंकि पानी जेड़ा से पानी दी कमी तालू महसूस हुई थी कने पानी दी वजह ने थोड़ा दिया आगे पीछे हो गया था ना जी कम जी जी। तो उसी प्रकार कई बार कोई तान ऐसा होंदा कि है जल्दी पकी आंदा कने कोई तान लेट पकने वाला होंदा ना जी जी जी जी। तो मेघनाथ जी कदिया लगा था तो हम जो कार्यक्रम
1: और बढ़िया लगा
0: जी रोज ही सुन दे
1: सुबह 4 बजे दे सुन करके हम सुनना
0: जी 4 बजे दे सुनना शुरू कर दे कने शामी दे कितने बजे तक सुन दे रहन दे?
1: शामी दे करी 9 बजे
0: जी। अच्छा 9 बजे तक सुन दे रहन दे जी। तमीग ना जी आज तो हाँ कुंदिया की
1: प्यारे जी बहुत प्यारे प्रोग्राम बहुत प्यारे
0: जी। धन्यवाद जी तुहंदा तहे दिल ते कने आज तुहां कुंदिया गीत सुनने जी अपनी पसंद च।
1: आज के सुनाई है राम दा संदेश आया।
0: राम दा संदेश
1: बन गटरी
0: जी जी। राम दा संदेश जरूर है गीत तुहां तक पहुंचा दे जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। दर्शकों तो सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने 28 सितंबर 2026 की गल करिए सोमवार का ये दिन है कने दिन की जड़ा शुरुआत है इससे तो बेहतर बेहतर एनर्जी कन्ने कीती होनी है या सकारात्मक सोच कन्ने कीती होनी है क्योंकि सोच जड़ा से यहाँ पर निर्भर कर दी है कि अहाँ किस तरीके ने अपनी जड़ा सोच है से रख देन। तो इसी कन्ने अहां भी तुहां तक जेड़ा सफर है सफर जो अगे बढ़ांदे न कन्ने आगाज़ अहां करा दे न फरमाइश कन्ने ताई गीत तुहां तक पहुँचा देन।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ये भजन करने श्रोता भी जरूर अहाँ करने जुड़ा देन कॉल जरूर अहाँ जो करा देन अहाँ भी कोशिश करा देन कि तिना जो कनेक्ट जड़े से करन तो जरूर तिना कने कर देन गलबात से कुथु ते बोला देन कने तिना दा ना क्या है। हेलो
1: हेलो राधे राधे जी।
0: जी नमस्ते जी राधे राधे जी।
1: मैं प्रवीण बोल रहा हूँ जी, पालन जैसे दिल्ली में रहता हूँ
0: जी। प्रवीण जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक है जी। बड़े बढ़िया गाने हम भी जी से
0: जी। अच्छा रोज ही सुन दे तो? हाँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता कदे लग दे तो हम जो कार्यक्रम
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा लगे था जी।
0: जी मुझे लगा था पहली बारी तो हाँ इस कार्यक्रम च जुड़े ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता क्या तुहंदी फरमाइश है कने कदिया मौसम है तुहंदी साइड?
1: मौसम है बढ़िया बरखा दा पर भी हल्दी बरखा कोई पता नहीं
0: जी। अच्छा ली बरखा दा मौसम बने है पर बरखा ली लगी यो नहीं है?
1: नहीं जी नहीं
0: जी जी।
1: दिल्ली में भी बरखा तो है पता ही है
0: जी जी जी। ता
1: ज्यादा हो जाएंगी तो दिल्ली पानी पानी हो जाएंगी कने नहीं होंगी तो गर्मी
0: जी। दिल्ली दी तो हाँ गल की कि अगर ज्यादा पानी अगर ज्यादा बरखा हो तो पानी पानी जड़ा से दिल्ली च हो जाता ना जी जमा कने अगर
1: आंजी, आंजी।
0: ना हो तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है मतलब गल ही क्या करनी ना जी। तो साफ सफाई का कितना की जड़ा ध्यान जड़ा से रख दे साइड मतलब
1: कुछ कुछ इलाके ऐसे ना जितनी वे साफ सफाई ठीक है ना बाकी ये है कि गंदगी जड़ी अपनी फैलाई होंगी
0: जी अपनी ना जी। कई बार हम सुनने च भी होंदा है कि ये पानी जड़ा है से इतना गंदा होंदा कि तिस चलना भी मुश्किल हो जांदा ना जी।
1: हां जी तेरी तो थोड़ा डाल ली मत पूछो हूं क्या दसिए
0: जी जी जी क्योंकि कई बार हां सुनदे भी हैं कि उस साइड दा दिल्ली या गुड़गांव दी गल करिए ता मतलब बड़ा ही माहौल बड़ा अजीब दे है ना जी उस साइड दा।
1: हां जी हां जी कुछ कुछ ता चार चार पांच पांच फीट पानी चढ़ी जांदा ता अपनी सोची ले फिर जाना की है पीछे
0: जी जाना भी किन्ना कने सही ना कि काम भी रुक जांदा फिर ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी। ता अगर हां कांगड़े दी गल करिए इथु दे मौसम दी गल करिए ता इथु दा मौसम बड़ा ही बेस्ट है ना जी।
1: हां जी जी मां जी मेरा मौसम ता बहुत अच्छा कने खास कर अपना पालमपुर धर्मशाला का बड़े बढ़िया है
0: जी। धर्मशाला दा ता मौसम पता ही नहीं होंदा कि कालू दी या मौसम चेंज हो जांदा है ना जी।
1: हां जी जी
0: जी कने इस टाइम दी गल करिए
1: मैं जी एयरपोर्ट च जॉब करदा कि कई बारी पैसेंजर आंदे बोलदे धर्मशाला जान से मैं बोलदा भी धर्मशाला जाना सामने इवनिंग मूवमेंट दिखना भी इतना साइलेंट मोटर होता है
0: जी जी। इवनिंग दा ता अलग ही माहौल है ना जी।
1: हां जी जी धर्मशाला दा अलग ही है
0: जी कने उने दी अगर हां गल करन ता बरखाला मौसम है बरखा भी लगी हो ना जी।
1: हां जी जी
0: जी जी जी। ता परवीन जी आज तो हां कुंडिया गीत सुनना जी अपनी पसंद च।
1: मेरा पसंद है कि गाना अली की एक बारी फेरा कदे मार गोरिए
0: जी। एक बारी फेरा मार गोरिए
1: कदे मार गोरिए
0: जी। जरूर ये फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
1: थैंक यू जी थैंक यू
0: जी जी। तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने अगले जेड़ा श्रोता न सब यहाँ करने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना करने गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हां जी ठीक ठाक बढ़िया
0: जी। तो हां कुथु ते बोला दे कने तो हंदा ना किया है जी?
2: पहचाने नहीं मैडम जी तो
0: जी आज ता नी पहचाने
2: अनु वाला ही कनाडा ते
0: जी। अच्छा अनु जी कनाडा ते बोला दे।
2: हां जी
0: जी। ता अनु जी ता अनु जी तो है पता है समय भी यहां वास्ते जरूरी है ना जी। समय भी हो जाता ना जी
2: जी। हां वाले आज फिर करेंगे फोन वहां
0: जी। अच्छा तो हां सोचे कि आज फिर फोन करिन देन
2: जी। आंटी
0: जी चलो अच्छी गल है। तो कनेड दा मौसम क्या बोला था इस टाइम?
2: ਮੌਸਮ ਬੋਲਾ ਦਾ ਵਰਖਾ ਲੱਗੀ ਹੋ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਰਖਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋ
2: ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ
2: ਤਾਨਾ ਇਹ ਨਿਸਰਾ ਦੇ ਤਾਨਾ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੀ ਨਿਸਰਾ ਦੇਨ
2: ਜੀ
0: जी ना अनु जी आज कौन दिया गीत तो हाँ सुन है जी कन्नैल राणा दा कौन दिया गीत सुन है जी तो हाँ
2: कोई भी सुनाई दिया वो
0: जी कोई भी
2: हाँ जी
0: जी जरूर जी तो हम दी जिड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुँचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हम दा जी तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्नै कन्नै गलबात तो हाँ जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्नै कर सकते कन्नै बाकी जेड़ा श्रोता न सभी जरूर अहाँ जो कॉल पर कॉल करा दे न पर फिर ते अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाना है कन्नै गलबात अजकने दिने दी करिए तो अजकना दिन खास कहे हुए 28 सितंबर की गल करिए हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा कन्नै अजकना जिहड़ा दिन है सभी खास है विश्व रेबीज जिहड़ा दिवस है से अज अहाँ बड़ा दिन 28 सितंबर जो कन्नै तुसां सारे भी जिहड़े से रेडियो कन्नै जुड़े होने न तां प्यागा भी तुसां मॉर्निंग जिहड़ा गुड मॉर्निंग धर्मशाला है इस भी तुसां सुनिया होना है कन्नै जरूर जानकारियां जिहड़ा ने से तुसां तक पुजदियां ने कन्नै तुसां सारे भी अपना जिहड़ा कीमती समय है से रेडियो गुंजन धर्मशाला जो जरूर दिंदे न कन्नै इसी कन्नै अहां भी थोड़ा देर अग्गे बढ़दे न कन्नै तुसां तक अगली जिहड़ा फरमाइश है से पहुँचांदे न इंजॉय करा तुसां सारे ही।

कानी दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे ये गीत इंजॉय कीता कने फिरी ते अहां वापिस पुजी हुन तुहां तक गलबात करना। इस गीत की फरमाइश अहां तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना दा नाम भी जरूर तुहां तक पहुँचाते न। तिना दा नाम है काजल देवी कने से रहने वाले न कंडी बाबा बड़ोते। तो तिना तक अहां ये फरमाइश पहुंचाई कने फिरी ते अहां वापिस आई हुन अपनी गलबात उपर। कने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तुह सारे भी इस सफर कन्ने जुड़ी सकदे कने अहां कन्ने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकदे। कने अज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न सभी तुहां जरूर सुना दे होने न। कने अपने जेड़ा काम कार है सभी करा दे होने न। इसी कन्ने अहां थोड़ा देर अग्गे बढ़दे न कने गलबात अहां करा दे न। अज जेड़ा खास दिवस अज अहां जेड़ा बना दे न विश्व रेविस जेड़ा दिवस है से अज अहां बना दे न। तशुतों तुह सारे जो ही पता है कि हर बीमारी जेड़ा है से अहां जो कोई ना कोई नुकसान जेड़ा है से देख री जांदी है। कने अहां वास्ते जागरूक होना कितना ज़्यादा जरूरी है। अजकने दिने दा जेड़ा खास मकसद यही है कि जागरूकता जेड़ा है से फैलानी है क्योंकि जल्द कहाँ जागरूक नहीं होंदे न। कने बीमारी दा जेड़ा अहां जो पता नहीं चलता है जल्द बीमारी जेड़ा है से जड़ ते ख़त्म नहीं होंदी है। तो कुथी ना कुथी अहां खुद जो नुकसान जेड़ा है से अहां जो पहुँचता है। कई बार तुह दिखते भी होने न कोई कुत्ता है तीजो अगर है तीजो कोई कट्टी लैंदा है या कुछ भी है कोई भी जानवर है तो तिसने ही जेड़ा रेबीज है से जरूर फैली आंदा है। तो कई बार अहां अपने आसपास ये भी सुनते न कि पानी जेड़ा से अहां जो पीना चाहिए या पानी जेड़ा से कोई पियांदे न या कुछ भी जेड़ा हाँ अपने गाँव च भी सुनते न। कने अहंदे जेड़ा बुजुर्ग हैं सभी बोलते न ठीक है सभी अपनी जगह सही हैं पर कुथी ना कुथी अगर अहां जेड़ा डॉक्टर दी सलाह है से लैंदे न हर चीज़ दी जेड़ा बीमारी है बीमारी दा हर चीज़ दा जेड़ा इलाज है से जरूर है। पर अगर अहां समय जेड़ा समय है ना से अहंदे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। समय जेड़ा है से समय के अनुसार चलना भी अहां वास्ते जरूरी है। तो जरूर जेड़ा टीका है से भी रेबीज का टीका लगाना भी अहां वास्ते जरूरी है। कने इसी कन्ने जागरूकता तुह तक तुह अगर जागरूक होंगे ताई तुह अपने जीवन जो जेड़ा है से बचाई सकते न। तो इसी कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जो इंजॉय करा दे न चाहे से पागल कुत्ता है चाहे बिल्ली है या बंदर हैं। तो कई बार ये जेड़ा कुत्ते न या बंदर हैं या बिल्लियां हैं से कट्टी लैंदियां न तो कुथी ना कुथी जेड़ा रेबीज फैलने का जेड़ा खतरा है से रहिंदा है। तो श्रोताओं तुह सारे भी कार्यक्रम के सफर च अहां कन्ने जुड़ सकते कने अहां कन्ने गलबात जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते नंबर तुह तक पहुँचा देन फ्री ते नंबर है 701-8117091। नंबर तुह तक पहुँचाई ते कने तुह सारे नंबर जेड़े से नोट करी लिया होना है। कने इसी कन्ने अहां फ्री ते थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ाना है। कने फरमाइश जेड़े से तुह तक पहुँचानी है ये फरमाइश अहां जो आई हुए परवीन जी दी कने से रहने वाले न दिल्ली ते। तिना तक अहां आई गीत ये फरमाइश पहुँचा देना।

0: तशुतं तुह सारे सुनिया ए गीत फरमाइश फिरी त्यहाँ वापिस पूजी उन तुह तक अपने माइकल, क्योंकि तुह सारे भी इंतजार जड़ा है से करते रहते न कि कलू दिया तुह गलबात सुनते न कने अपनी पसंद का जड़ा गीत है उसे सुनते न। गलबात भी तुह सारे ही सुना दे होने न कने इसी कने इंतजार तुह चो रहा है समय के अनुसार अहाँ भी जरूर चलते न कने अज अहाँ जड़ा गलबात करा दे न रैवीज दिवस के बारे च। तशो तो जड़ा कई बार होंगे ना कि रैवीज दिवस जड़ा है से अज अहाँ खास तौर पर बना दे न अगर घाव च अहाँ जो लगी आती है या कुछ भी है तो जेड़ा भी घाव है तो जो हाँ जो जल्दी जल्दी जेड़ा है से पानी कन्ने धोई देना है तुरंत। तो इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? जी ठीक बढ़िया
0: जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: मेरा नाम अनूप कुमार है
0: जी। अनूप कुमार
1: जी मैं चंबे ता बोला कर रहा
0: जी। चंबे ते बोला दे
1: जी।
0: जी चंबे दा मौसम कदे है कने कितनी की रौन का लगी है?
1: चंबे दा मौसम ता आज थोड़ा ऐसे ही है, बारिश लगी है
0: जी। अच्छा बरखा जेड़ा ऐसे लगी हो?
1: हाँ जी बरखा लगी वाली
0: जी। जी ता कदिया लगा था तो हम जो ये कार्यक्रम जी
1: बड़ा बढ़िया लगा था मैंने जी।
0: जी रोजी सुन दे तो हाँ
1: जी हाँ जी।
0: जी ता अनूप जी आज कुंडे ही फरमाइश है तो हम दी कुंडे गीत तो हाँ सुनने है।
1: मेरी फरमाइश है अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी है।
0: अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी है। जी जरूर ये फरमाइश तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: जी मैडम जी।
0: जी अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जरूर जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना करने भी गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते शशि मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी जरूर जी जी। श्रोता दा प्यार ही अहां वास्ते सब कुछ है ना।
2: तुहां दा जेड़ा गलान बोलन है ओ बड़ा अच्छा लगदा है।
0: जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद जी।
2: अच्छा दा एक भजन है
0: जी जी
2: जे सच बोगलन दे गोरा दे श्री जी जे आन सब दे नहीं जाना।
0: जी सच्ची गलान दे जी।
2: हां जी
0: जी
2: सच गलान दे ना आन सब दे नहीं जाना।
0: जी कई बार जाना भी पोंदा ना जी हर किसी
2: दी जाने बंदा। अच्छा जी
0: जी जी सोच जी जी जरूर जी धन्यवाद जी। तशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है जरूर कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है ये फरमाइश वहाँ पहुँचा देन अनु जी तक सरहने वाले न कनेट दे।

दर्शकों तो हंसा रहे हैं ये गीत जिड़े से एंजॉय किया करने जरूर पसंद भी आया होना है क्योंकि अनु जी ने बोलिया था कि करनैल राणा की आवाज़ च कोई भी गीत जिड़े से तिना तक कहाँ पहुँचाई देन तो जरूर अहाँ तिना तक ये गीत पहुँचाया कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना तक भी ये गीत जिड़े से अहाँ पहुँचाया। इसी कने खास जानकारी जिड़े से तुह तक पहुँचाई देन कि प्रदेश 1 अक्टूबर की गल करिए किसान जो आईडी बिना जिड़ा खाद है से हूँ नहीं मिलनी है यानी कि आईडी जिड़े से होना जरूरी है कने इसी कने जमीन का जिड़ा रिकॉर्ड है सभी डिजिटल कराना भी जरूरी है। तो हाँ सारे भी जलू पंचायत घर जाते हैं तो जरूर तुहते भी जिड़ा नाम है या जिड़ा भी डॉक्यूमेंट ऐसे जरूर मंगते हैं कने इसी कने आईडी जिड़े से होना तो हम जरूरी है ताई तो हम जो जिड़ा खाद है से मिलनी है तो जरूर ये जानकारी तुह तक पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी सुनी तो हाँ फिर ते थोड़ा दिया अपनी गलबात जिड़ा रुख है से बदल देन कने रुख जिड़े से हाँ अपनी गलबात करा देन कि रविज दिवस जिड़े से आज हाँ बना देन कने 3 जरूरी कदम लापरवाही जिड़े से यहाँ जो बिल्कुल नहीं करनी है तुरंत डॉक्टर मैं पहले भी बोला कि डॉक्टरे दी जिड़ा सलाह है या डॉक्टरे दे डॉक्टरे जिड़े से जरूर जाना है तो हाँ घरेलू जिड़ा नुस्खे न से जरूर नहीं अजमाने न क्योंकि घरेलू नुस्खियाँ जिड़े से यहाँ अपना समय जिड़े से बर्बाद करी देन कने कुथी न कुथी यहाँ कुछ जिड़े से खोई देन या खुद जो नुकसान जिड़े से पहुँचाई लेंदे न। कई बार जिड़ा हमारे पालतू जानवर हैं तिना का टीकाकरण करवाना भी जरूरी है अगर तो हाँ घर च कुत्ता रखा है या बिल्ली रखी हो है तो तिना का समय समय अनुसार रेबीज का टीका लगाना जिड़े से जरूरी है क्योंकि सुरक्षा ही यहाँ जो सुरक्षित जिड़े से रखती है तो जरूर अपना भी ख्याल रखना है कने अपने जिड़ा जानवर हैं तिना का भी ख्याल रखना है। कई बार हम मस्ती मस्ती से जिड़े से चाहे से कुत्ते चाहे से बिल्ली है तिना कने खेलना जिड़े से शुरू हो जाते हैं कने सही यहाँ पर लापरवाही जिड़े से भारी पी जाती है कने हाँ उसी चीज़ जो हल्के च लेंदे न तो जरूर कोई भी बीमारी है जो हल्के च नहीं लेना है डॉक्टरे दी जिड़ा सलाह है से जरूर लेनी है। तो इसी कने फिरी ते थोड़ा दिया मन करा दा कि कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान तुह तक अगली जिड़ा फरमाइश है से पहुँचान अगली फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो चंबे ते तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा तो बड़ा ही प्यारा गाने अम्मा पूछदी।

तशुतों तो सारे सुनिया गीत फरमाइश फिर तहाँ तुह तक पुजी और गलबात ले करी कि तुह सारे भी कार्यक्रम का जोड़ा सफर है इंजॉय करा दौने समय की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो 2:46 कार्यक्रम चो कमय तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो जरूर 2 से 3 बजे तक गलबात रहनी है पर हूँ सिर्फ हाल 14 मिनट कार्यक्रम च बचिया न क्योंकि समय जोड़ा से अहे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो जरूर मौसम की गल करिए धर्मशाला का जोड़ा मौसम है से कुछ ना कुछ अपना जोड़ा बदलाव है से जरूर लैद है तो मौसम के अनुसार तो अपना जोड़ा ख्याल है से रखना है। ठंड जोड़ा से अह जो महसूस होती है कन्नै इसी कन्नै हूँ मन करा दा कि जोड़ा क्या तुह सोचा दे होने कि मन क्या करा दा मन ही करा दा कि जोड़ा जैकेट है कोटियां ना तिना जो हूँ कड़ी लीए क्योंकि सर्दियों का जोड़ा एहसास है से होना जोड़ा से हूँ शुरू हो तो जरूर कई तो मुझे लगा था कि कोटियां कन्नै अपनी जैकेट जोड़ा है से जरूर निकाली ली होनी अगर अह धर्मशाला के मौसम की गल करिए तो इसी कन्नै अह फ्री तो अगे तो जरूर बढ़ना है पर तुह भी इंतजार करा दे होने इंतजार तो अह भी करते हैं कि कल दे जोड़ा श्रोता न से इस कार्यक्रम के सफर कन्नै जुड़ते न कन्नै अपनी जोड़ा गलबात है से रखते न जरूर गलबात रखना भी जरूरी है कन्नै समय के अनुसार चलो अह रेडियो कन्नै जुड़ी आते हैं तो कुछ ना कुछ अह जोड़ा मन है सभी लगे रहा है कन्नै मन लगाना बड़ा ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मन जोड़ा है ना से अह कई बार ज़्यादा सोचना जोड़ा है से शुरू हो जाता है या कई बार अह ज़्यादा ही सोचना जोड़ा है से शुरू करी देन क्योंकि ज़्यादा भी सोचना जरूरी नहीं है सभी अह की सेहत जो कुछ ना कुछ नुकसान जोड़ा है से पहुँचाता है तो ज़्यादा नहीं सोचना है अपना जोड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कन्नै रेडियो गुंजन धर्मशाला जोड़ा है से तुह सुनते रहना है तो इसी कन्नै अह फ्री तो अगे बढ़ना है कन्नै तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चलना है क्योंकि अगली जोड़ा फरमाइश है से जरूर तुह तक पहुँचानी है कन्नै ये फरमाइश अह तक जोड़ा से श्रोता पहुँचाई पर तिना अपना जोड़ा ना है से जरूर नहीं दस्या तो तिना तक अह गीत पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये भजन ये फरमाइश फिर ते हाँ थोड़ा दे आग्ञा वरदेन कने गीत तुह तक पहुँचा देन। हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है कने बच्चे जिना न से हमेशा अपने माता पिता वास्ते कुछ अच्छा सोचते हैं। जिंदगी है, जिंदगी दा सफ़र है, जिंदगी दा ये दौर है कि कुथी ना कुथी अहाँ जिहड़ा से सफलता दी ओर भाग देना, या सफलता भी अहाँ वास्ते ज़रूरी है, फैमिली भी अहाँ वास्ते ज़रूरी है, पर फिर भी जिहड़ा से अहाँ कुथी ना कुथी अपनी जिंदगी जो जिहड़ा से अपनी जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है उस जो अग्गे बढ़ाते हैं, कने तिने अहाँ थोड़ा जिहा अपनी फैमिली ते भी दूर होंदे न, कने माता पिता भी हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चे जिहड़ा न से अहाँ वास्ते समय देन, कने बच्चे भी ये जानते हैं कि माता पिता अहाँ जो जिहड़ा से समय देन। तो जरूर ये गीत तुहां तक पहुँचा देन, तुहां सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत प्यारी देई फरमाइश गीत तो सारे जो ही पसंद आया होना है क्योंकि गीत बड़ा ही बोली सकते कि बड़ा ही प्यारा था कने कुथी ना कुथी इस आंदा जेड़ा माता पिता ने तिना दा प्यार जेड़ा है से जरूर बच्चे वास्ते झलका दा था कने बच्चों का जेड़ा माता पिता वास्ते प्यार जेड़ा है से झलका दा था कि माता पिता जड़े से हमेशा अहं दे बारे च अच्छा ही सोचते न अच्छी परवरिश जड़े से अहं तक पहुँचाते न पर अहं किस तरीके ने तिना दे जड़ा संस्कार हैं तिदी पर खरा जड़े से उतरते न तो इसी कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम का जड़ा समय है से इतु ही संपन्न होंगे समय जड़े से हम जो बोला था कि इजाजत जड़े से तो ले लिया।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

कभी उस ओर चले जाते हो। मोहब्बत हमसे, वफा गैरों से, ये हुनर कहाँ से लाते हो। करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल, जो कभी मेरे ख्वाबों में

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया,

0: देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
2: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
1: हाँ बोलो।
2: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ। देवी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
2: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
3: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो इंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हाँ सचिन कपूर हाजिर बुचुगा 4 बजे हाजिर बुचुगा श्रोताओं कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है श्रोताओं तुंदे, उम्मीद कर दें कि तुंदे हाल चाल ठीक बुने तो सब खरे बुने अपने घरे खुश और तंदुरुस्त बुने हिन और इंसान अक्सर यही चाहता है श्रोताओं की खुश और तंदुरुस्त हूँ। बहरहाल आज बड़ी खास कहने सो जयंती है श्रोताओं है ना, शहीद भगत सिंह जी भी आज जयंती है 28 सितंबर जो श्रोताओं इसी सो की भारतरी महान गायिका स्वर कोकिला और भारत रत्न तो सम्मानित लता मंगेशकर जी री भी आज की असो जयंती है श्रोताओं। ठेरे अलावा बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह रे भी की असो आज जयंती है श्रोताओं 28 सितंबर जो श्रोताओं और त्यारा जन्म 28 सितंबर 1907 जो किया सुबह हुआ तो श्रोताओं ता बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। बिल्कुल लाइव कार्यक्रम में चल रहा श्रोताओं और इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7018 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मौके फिर ही तू हो गया है शेयर करिंदे हैं 7 0 8 8 7 0 9 8 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। इन श्रोतों यह गल विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर भुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर भुआ। तो इस समय श्रोतों 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हा जी बिल्कुल 15 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के असो इस समय तापमान दसो करते हैं श्रोतों और न मेरी गल करूँ धर्मशाला में ह्यूमिडिटी की असो इस समय 78% रे आसपास की असो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी की असो बन रही है श्रोतों 15 डिग्री सेल्सियस रे आसपास तापमान है तो मौसम ठंडा बुझेगा और इवन की ठंडी हवाएँ क्या सो इस समय चल रही है श्रोतों ठंडी फिजाएँ क्या सो इस समय चल रही हैं। तो इस समय मौसम रहा हाल चाल जो कि तो है सब महसूस करो कर दे उन्हें थोड़ी करी ठंड का जो कि अपर हिमाचल में के या इन दे तड़ी करखन करखा बर्फबारी की असो भी शुरू छोरे है शतो है ना और ये बर्फबारी जी या शुरू भी हुई है शतो और तठेरी वजह भी किया सो काफ़ी ज़्यादा ठंड इच्छुक कर दिया। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो है सब हूँ कर देना आर जे सचिन कपूर सो के आगाज रा इंतज़ार मुना तू सब भी जो कि आगाज किए बोला कस गीता हो कि बोला आगाज तासु जरूर करना लेकिन नंबर आक मौके फिर यह है शेयर करी देना 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो हो नहीं सकते अपने क्षेत्र जानकारी के श्रोतों सो साझा कर सकते हैं। एक गलारा खास ख्याल रहे जानकारी साझा करने लायक जरूर हुआ और इसी बीच इन दे श्रोतागण के सो अस हो गए कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बल लूँ देन और कड़ी थो बल लूँ देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: हेलो।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: और ठीक ठाक ना सर जी?
0: बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया तो बल्ला तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
0: और कर कर लग रहे
1: बस जी सर जी तुसा दे प्रोग्राम सुना दे सर जी ऐसा।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी।
0: जी कौन देने गीत थोड़ना दसो
1: अजय भरमौरी दी आवाज सुनाई दे गाना सर जी धारा दूरो मेरे नागा धारा धारा दूरो मेरे नागा।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी
0: ठीक है सर जी जरूर होने ले दूसरे गीत।
1: धन्यवाद सर जी धन्यवाद। नमस्ते सर जी।
0: धन्यवाद जी नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते।
0: श्रोतों FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन तो है ट्यून कर रहा और लाइव कार्यक्रम इस समय चल रहा है श्रोतों। आइए जी जरूर हूँ ले है धारा दूर हो मेरे ना गया धारा दूर हो लेकिन तथों पहले श्रोतों आगाज किया सो कर लिंदा हिन कार्यक्रम रहा और फिर आगाज तो बाद श्रोतों तंदे सबीरी सबीरी फरमाइशा के ना सो है जरूर पूरी कर ले।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेन सो तो है सब हूँ कर दिन आर जे सचिन कपूर सो गया ये जी कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़न दे हिन और कार्यक्रम मंच लेके चलते हैं दे श्रोता गण असो के बिल्कुल कनेक्टेड हिन जनाब ज़रूर कॉल कर सकते हैं 708-8-709 पर चले जी श्रोता कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोल लेंदे और कड़ी थम बोल लेंदे नमस्ते जी
1: नमस्ते जी हेलो
0: हेलो नमस्ते जी वीडियो सेट रे आवाज तो कनेक्ट हो चुके ना वीडियो सेट रे आवाज की है सो बिल्कुल जीरो करी दिया या फिर थोड़ा करे कि सो रेडियो तो दूर चली है तो है
1: हेलो
0: हां जी हां जी
1: कुड़मणी का गाना सुनना याद आई है कुड़मे भी
0: कुड़मे अच्छा कुड़मे क्या बात है क्या बात है अच्छा कुड़मा रे याद आया
1: नाओ
0: चलिए रिश्ते रिश्ते के ने सो निभाने तो निभदन है ना जी और याद करना अच्छी गल अपने जो कि सो याद बाने बुंदन ना याद करने रे भी याद किए सो अपने जो करना चिंदा ता तुसु कुड़मारे याद आए ता है तुसु जरूर हुनंदेन जी ये गीत थैंक यू बरहाल इन द अगले श्रोता असुगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते जी नमस्ते सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: राम
0: दा बुलावा नहीं आया
2: राम दा बुलावा आया बुढ़िया बन दा खड़ी
0: अच्छा अच्छा अच्छा माध्यम तो भी लाइव कर देना बंदा मतलब फोन अंदर भी चलिंदा वे फेसबुक सो बंदे आग मुके तुस वो की जरूर
2: खुश रहा तेरा परिवार खुश रहा तू खुश रहा खुश का जिला सी जो
0: चली जी ये तंदा सियाने रा आशीर्वाद आ प्यार आ ए दिंदा मुंजो सारा
2: बड़ा प्यार माँ बाप रा बच्चे यकीन ये जमे संसार दिसुरा
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
2: यकीन ये गोर दिसुरा
0: बिल्कुल बिल्कुल पर याने सियाने रा भी सहारा है और आशीर्वाद प्यार के सोचिंदा ना जी
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: मो बड़ी जल्द तू सो ना बलना इने तो तू सुई ना फेरे जी पहले छुरे थी तो ठीक पूछ लिया हूं तू सो बुलावा के सो तू तक पहुंचेगा ना मेरा
2: ठीक है ठीक है
0: ठीक है जी ध्यान रख अपना तो है ना जी ठीक है जी धन्यवाद
2: धन्यवाद धन्यवाद
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया ना सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वेडियो सेट में बहरहाल कार्यक्रम जो कि सो है हगो बढ़न दे हिन इन दे बहुत सारे श्रोता के सो बिल्कुल हसोगी कॉल करू कर दे हिन और कनेक्ट किया सो जरूर कर ले लेकिन फरमाइश और दौर के सो भी असू पूरा किया सो जरूर करना और ये चिट्टेरी होड़ के सो तो ताए मुकी सकते हैं कि जहने प्रत्येक व्यक्ति की असवाक बुच गला हर एक व्यक्ति की इस वाक पूछ गल था डमटाल माँ भी चिट्टे असोग की असो पंजाब री महिला अरेस्ट भूया शो तो 34.5 ग्राम हीरोइन बरामद भूया महिला तस्कर रे खिलाफ केस दर्ज बुझगो अशो तो सप्लायर और नशे री खेप विस्तरों तक पुजने माँ जुट रहा पुलिस हिमाचल पुलिस बहरहाल लेके चलते नागुन शो तो और फरमाइश और दौर किया सो पूरा करते हैं।

0: শত এফ এম ব্যান্ড ইকানোয় দিশামলা বেদ ওমেগা হিটস পর রেডি গুনছেন ধর্মশালা দোয়ে সবি টিউন কো রো আর কার্যক্রম ইন দি আপনি গা পাগেন আসো বা খুব ইকেন আসো চল রিন তুন দে সবি রে রেডিও সেট মা রেডি গুনছেন ধর্মশালা মঞ্চ তো সব শ্রোতা অনুগর দেন রেডি গুঞ্জন আর যে সচিন কাপুর সো কি আইয়ে ছি কার্যক্রম জো হগো চল দেন শ্রোতা আর কল জরুর করে সকদেন জি 7018109 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ हाँ शेयर करनो तो सोगे 7018107109 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की सो होनी सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी अगो की साझा कर सकते हैं गलर खास ख्याल रहे कि जानकारी रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर भुआ श्रोताओं दसने लायक किया सो जरूर भुआ तो चलिए थोड़ा करे हगूँ अह बड़ी गन दिन अब और इन श्रोतागन के सोच होगी कनेक्टेड हिन कनेक्ट कर दें हिन और उस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दें नमस्कार जी
1: जी
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन डिस्ट्रिक्ट चंबा होली थों बलुंदन
1: अंजी अंजी
0: क्या बात है ठीक ठाक ने जी राजीव बाजी
1: बड़ी सर से बल्ला तू ठीक है ना
0: ठीक ने जी सेहत भी ठीक है इंदी
1: अच्छा अच्छा मौसम की ना आज
0: मौसम तो 15 degrees Celsius रे आसपास के सो टेम्परेचर दसो करदा यानी कि ठंडा मौसम है तुंदी बस यूं तने पे गोबर का
1: ना ना यूं तने पे बरखा लग रही है
0: बरखा लग रही है हाँ बिल्कुल ये भी बरखा के सो उन्हें बल्ली सक देना है कि 10 बजे बाद के सो बरखा लगी पे थी बीच थोड़ा करे फिर ये ठीक रहे तो मौसम पर हल्की फल्की बरखा मतलब ये आंकने लग रही है ये बल्ली सक देना है
1: बस तेरा सो मतलब आज दिन दिन भर सो सो देता राष्ट्र बस के बरखा लग रही थी
0: हाँ बिल्कुल तभी तुंदी किनारी तो यूं पैने वाला मुना
1: हाँ सर हले तक तक है पर नवंबर लास्ट मंथ नवंबर हो बाद टाइम कोई ना मतलब ये पैसे में नवंबर हो बाद
0: हाँ लेकिन जी जनाब कितना तो है अपना शुभ ना दस दे आक मौके क्या ना शुभ ना
1: मेरा ना अनूप कुमार
0: अनूप कुमार जी ओली थों बल्लून दें तो है ना चंबा बरमोर चंबा की बेगो चलो
1: आजी,
0: आजी। कितना टाइम हुआ कि प्रॉपर सो वाले बर्फ के सोना पे होंदे जो अज थों 20 साल पहले या 15 साल पहले के आ सो होली मा भरमोरा मा पिंदे थे
1: तो ता बच्चा सा बारे बार बता रहे कम से कम कोई आज 12-15 साल पहले ठीक है 2003 में पाए थे
0: क्या बात है
1: ता अब हम पंदे हां पर उतने ना पंदे जितने आ चंद है ना सोने ना पंदे आ गए हां जी
0: मतलब 2012-13 तो है दसो है दो तीन दिन पर तहने पे रे तथो बाद क्या है तू सो क्या तो है मतलब समझ रख देन कि क्या ऐसा हुआ कि भाई तस प्रकार रे बरखा ना पे उगड़ दिया या तस प्रकार रे बर्फ गया सो भरमोरा ना पे उगड़ दिया क्लाइमेट चेंज
1: क्लाइमेट पे आज कल तो सीता
0: ग्लोबल वार्मिंग मोटा मुद्दा
1: बड़ा ज्यादा कंपनी दुनिया भर लग रहे ये धुआं को एक तो सिवा 10 दिवस हम अंदर क्या क्लाइमेट में ऊपर गर्मी भी गंदे है तो फिर ये हम इतना आया था मुद्दा कि मतलब बर्फ दे मतलब टेंपरेचर जे सोचना ठंडा ना मुद्दा चुना बर्फ पे सको
0: एग्जैक्टली
1: पर फिर ये सब ने मतलब काफी रन दे मतलब बर्फ दे आवे दिल्ली है ना हां जी हां जी
0: एक कुछ एक मतलब ये कुछ एक मुद्दन जठेरी वजह तो कि असो असो सो प्रॉपर ना बरखा मोड़ो कर दे आवे ना सो बर्फ मोड़ो कर दे है ना
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब तो शिवरा काली युग का टाइम है ना वे पहले सतयुग ही रे तत मन कुछ ना कुछ पाप रहा थी
0: एग्जैक्टली
1: अब काली युग में तो शिव पता ना देव इतना देवता मन मन में सिद्ध जड़ अपने मन ना जैसे सो जदू ना ता ये थोड़ा प्रभाव पंदा के इंदे मक शिव भूमि तो शिव पता ब्रह्मोर
0: शिव भूमि बिल्कुल भरमोर शिव भूमि है बरसत हो
1: तो यार तो मतलब ये मनी मेष मन जिन जाता कसना दुनिया भर का गंद कोई मतलब सात साल साथ दे इंसान रहन देना तो भी थोड़ा मतलब बंदा के मतलब चलो तो एक करो अंदर तो ऐसा बे रख देते चिया है
0: बिल्कुल
1: माल भगवान भी तेरा सोचना क्या मैं तुम भी सोच जैसा सभ्यता है जैसा सभ्यता होंगे मेरे
0: चल दे
1: थोड़ा फर्क होता
0: एग्जैक्टली बंदा एग्जैक्टली बंदा
1: चलिए
0: जी बड़ा अच्छा लगो दोस्तों की गल करी करी और भी श्रोता कनेक्ट हो चुंदे लेकिन जहने भी भरमौर थों ओली थों या भरमौर पूरे क्षेत्र थों कड़ियों भी फोन यही है ना तो दिल के सो बड़ा खुश हो चुका मेरे को जो कि इंदा सभी रह गया सो जन्म स्थान या फिर इंदा सभी रे पुस्तैने की या इंदे जो धरोहर है सो भरमौर थों या है ना तो दिल बड़ा खुश बंदा
1: जी मतलब रिक्वेस्ट अगर तो है मतलब होली या भ्रमोदर रहने वाले ने
0: जी
1: एका जगह सर
0: अहे ओली रे जी
1: ओली कौन कल कौन सी जगह
0: ओली रा ओली वगैरह थो जी एग्जैक्टली तब है सुबह ना पता
1: अच्छा अच्छा
0: कुछ क्या है बड़े साल थो कि सो अड़ी रे कर देना जी
1: अच्छा अच्छा आओ होली प्लेट हां ना मेरा मतलब ग्रां प्लेट है मतलब ना
0: हां जी
1: तो मतलब ये जो होली जब सुन जाता मतलब हो सकता है ग्रां रूम हो ना वाला टाइम में भी सूर्य
0: अच्छा
1: हां जी हां जी
0: जी तो क्या क्या है गुजारिश कह दी तू है तो तुंदे तो है अपनी गुजारिश दसा जी
1: मेरे गुजारिश था कि आज थोड़ा मौसम भी ठंडा था मतलब ये मेरी गुजारिश की गाना मैं सीधा मैं फिल्म मित्रा दी
0: मैं फिल्म मित्रा दी माफ करा जनाब ता ये गीत ब्रॉडकास्ट ना हो सकता है सिर्फ इन गदयाली गीत के न सो बोल सकते हैं और हिमाचली गीत के न सो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं है
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ तो अपना कोई गद्दी गीत तो है दस ही दिया
1: अच्छा चलो तो अपनी मानसिकता सुनाई गद्दी गाना कोई
0: चलिए ठीक है लेकिन तू सो तस प्रकार रहा है गीत के सो सुनाने की कोशिश जरूर कर ले
1: बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ वो बोले जो हमारे कोई गाना
0: जी जी बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद जी चलिए श्रोताओं इंदे अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी था बोल रहे हैं
2: हाँ बोल रहे हैं हम हमारे घर खनियारे ना
0: जी जी जी
2: उस टाइम में हम अमृतसर के बोल रहे
0: हैं अच्छा अमृतसर क्या बात है क्या बात
2: है अपने गाने से खुश कर दें ना
0: हाँ जी
2: आप एक गाय का भजन वहां दस दे
0: बिल्कुल बिल्कुल कौन दिन की भजन होना तुसु
2: भजन ओ मेरे राम जी राम नी जपिया
0: ओ मेरे राम जी राम नी जपिया
2: हां जी
0: अच्छा
2: बस और तोहा सुन करिन दे हम गाने में तहा क्या तोहा दसने गाने
0: चले जी सौभाग्य
2: बढ़िया गल है बढ़िया ख्याल तो तोहा गाने क्या दसने असाई
0: चलिए जी तुंदा प्यार है बड़प्पन आशीर्वाद
2: तो हां हां गल्ला भी खुश कर दिया था गाने तो बोला है ना
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी जी उनको रो राउन आ चीज सचिन का पूरे समय कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जो कि असो ब्रॉडकास्ट करू कर दहा और अनेक श्रोता आसू की कैन सो जुड़ू कर दहिन चाहे भरमौर थो चाहे अमृतसर थो तुंदे सामने या बरहाल अब फरमाइश दौर के असो अह पूरा कर दहिन कजो कि अक कुड़मणियों के आ सो अपने कुड़मारे याद के आ सो इच्छू कर दे हा तियों याद इच्छू कर दे हा त तैयारी याद में अह थोड़ा करे गुड़ किया सो पाई दिन दहिन यानी कि तैयारी फरमाइश किया सो है पूरी करी दिन दहिन और रिश्ता हूँ हमेशा वलदा श्रोता हूँ रिश्ते निभाने थो के न सो निभ दहिन है ना और रिश्ता बचाए करे रखना किया सो बहुत ज़रूरी बुन दहिन बहरहाल हूँ दिन ये गीत तुंदे सबीरे रेडियो सेट में

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा कैंसर होने कर दिन तो है सब आर जे सचिन कपूर सोगी हिंदे अगले श्रोता आस होगी कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बल्लू दिन और करी थम बल्लू दिन नमस्ते जी।
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल न?
1: बस उस मालिक दी मौज है जी।
0: अच्छा तब तो है गाय भी पूछू रही थी
1: हरदेव जी। ना इंदे नहीं महाराज जी,
0: इंदे बड़े पुराने तो है श्रोता हिन और बलदन के इंसान के है ना सो हमेशा ये करता कि भाई जो जहने नवा रिश्ता मोलदा ना तो तती में बड़ी तसी खूबी के ना सो नजर इंदी है ना और पुराने रिश्ते में के सो बड़ी खामी के ना सो नजर चलीन दिन कमी के ना सो नजर चलीन था नजर चलीन दिन तसु कोई कमी तो ना तसु नजर ही चुगर दिन
1: नहीं नहीं महाराज जी बिल्कुल ना।
0: अच्छा
1: पता क्या हो बिसुरा
0: जी
1: आज तो मेरी बाई लग रही है।
0: हाँ जी
1: ब्यागाई के सूत्र गए थे बांध पूरी खराब हो गई।
0: ओहो
1: आज आके महीना बजूगा पूरा।
0: ओहो
1: पर अब ठीक आ गए उंगली उंगली पे चली पे नाच पैर हाथ भी चली पे ए, नगरोटे गया तो इं मत कोई दस चुका करे आगे बना गंध ला करो जुआने जुए पाई गुम्मा नून पाओ तो अगली लवासदा रहो 15-16 दिन।
0: अच्छा
1: फिर मेरी बाह आ चली पे ठीक ठाक बजिए
0: नगरोटे आले के दसुदा
1: इं वलो पट्टी करनी।
0: अच्छा।
1: मिल नहीं जनाब मुने करानी पट्टी बोले आपको डॉक्टर बनना मिल बिल्कुल।
0: अच्छा
1: बिल्कुल ठीक ठाक है महाराज।
0: अच्छा
1: तो दूसरी गल है कि मेरे रेडियो जवाब दी गो क्योंकि सब बैटरी खत्म हो गई।
0: हां जी हां जी
1: आके निकल दे ना रेडियो और थो लगाओ चाहे फंस लगा ना फिर बड़े जोर तोरे हो लगी वे आज।
0: अच्छा
1: चलो आज मैं गल बात ही कर लंदा।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है और तो ठीक इतना ज्यादा था ना मतलब
1: नहीं
0: करे
1: नहीं महाराज जी नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है बाबू।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी उन फोन दो बजे का फोन जरूर कर दा।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल एरा ताया है सोचुंदे थे कि इतने महीने ऑलमोस्ट बच गए ना इंदे हरदेव जी कर खा दसा दिन आख मौके था जुड़े गंदे
1: बिल्कुल बिल्कुल महाराज
0: तुंदा सभी रात आशीर्वाद है जनाब।
1: ओ महाराज इंदा भी उस मालिक दा बड़ा उस मालिक दा
0: उस मालिक रा आशीर्वाद है तुंदा आशीर्वाद है नहीं तो जिंदगी में ता बड़ी परिस्थिति हिन जो कदी कदी लंघना बड़ी मुश्किल लगदी हर कसी हो हर कसी भी जिंदगी में कदी कदी कुछ ऐसी परिस्थिति के न सो चली दिन की सो कुछ ऐसे पोड़के न सो चली दिन की सो लंघना मुश्किल हो जिंदा है ना डगमगाई गंदा इंसान।
1: हां जी हां जी
0: जी।
1: अच्छा जनाब जरा तुंदा घरा नंबर सो थोई है ना?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा जरा कुछ रात की तुसु गल करने नो के बैठ है।
0: अच्छा तो हाँ जनाब जरूर मुझे 6 बजे कॉल करा 5:30 बजे कॉल करा।
1: ठीक है जनाब
0: है ना जरूर करे जी हूँ बिल्कुल तुंदी कॉल पिक करनो।
1: ठीक है सर
0: बाकी सब कुशल मंगल कोई फरमाइश तो नहीं है ना?
1: नहीं नहीं कोई फरमाश नहीं फरमाश है या कि आज दादी माँ का भजन सुनाई दिया जी।
0: अच्छा दादी माँ तेरा भजन होना
1: जी महाराज
0: ठीक है जी जरूर होने ले है।
1: ठीक है महाराज जी।
0: ठीक है महाराज जी नमस्ते।
1: नमस्कार महाराज
0: जी। श्रोतम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा वेड़ी गुंजन और आऊँ सचिन कपूर बहरहाल चल दिन फरमाइश।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही श्रोतो भरमौर तो कॉल थी और चलिए भरमौर से भूमिया हिंदी सभी रिहना ता भोले शंकर जी रे दई बोल कैंसो जरूर हूँ लेन देन फरमाइशरा दौर जरूर पूरा बच्चू गर्दन।

वाकई मैं इन श्रोताओं और ये बड़ी असलियत और बड़ी सच्चाई की सो इस गीता मन जो छलको कर दे श्रोताओं की वाकई मैं अहे सब कुछ कर देते इन है ना अहे सब कुछ इस गीता मन जो आई थिंक मुंजो इतों बात किया सो कुछ भी बयां करने की ज़रूरत किया सो नहीं क्योंकि इस गीता मां सब कुछ किया सो बड़े ही सरल तरीके हो किया सो दसो वाकई है ये सब कुछ कर दे है और ये ह्यूमन नेचर अह कुछ भी करी लैन छोतो ये चीज़ है ना बोली सकते और ना मतलब इन चीज़ें तो है परहेज भी करना चाहता भी शायद ना कर सकते हैं लेकिन असलियत है कि परहेज के सोचू करना चाहिए हा छोतो इन चीज़ें तो बहरहाल भगवान रा ना हमेशा लेना चाहता छोतो समय पुछगो तुसु सभी थो हलविदा लेने रहा तुसु सभी जो टाटा बाय बाय भलने रहा गंदे गंदा का आखिरी फरमाइशा है भी पूरी कर दे हरदेव जी रे फरमाइशा और इंदी दादी माता रे भजन हा ता तुसु सभी थो सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त और गंदे गंदे बलना चाहो शो तो माँ बाप री सेवा ज़रूर करा किसी रे बुरा कदी मत करा और खुश रहे तंदुरुस्त रहे धर्मशाला जो सुंदर रखने माँ किया सो अपनी भागीदारी ज़रूर

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। अब आप सभी सुनेंगे आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल के 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य, बड़ी कंपनियों को प्रदेश में बुलाकर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की तैयारी। प्रदेश के 33 सरकारी स्कूल डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील होंगे, शिक्षा विभाग ने मांगी आवश्यक जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मार्च तक डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे, विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत। 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना खाद नहीं मिलेगी, कृषि भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल करवाना होगा। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखकर स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली का विरोध करेंगे। बीबीजी आरएमजी में अब फर्जी हाजिरी पर लगेगी रोक, डिजिटल निगरानी के लिए एनएमएमएस ऐप का इस्तेमाल। प्रदेश की ग्राम पंचायतें 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी, 16वें वित्त आयोग की एनटाइट ग्रांट से होगी खरीद। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 1000 हिमाचली युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की ओर से अब तक 6 ओवरसीज प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें कुल 396 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 156 अभ्यर्थियों का विदेश में रोजगार के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं में से 68 युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रोजगार मिल चुका है, जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को विदेश भेजने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को प्रदेश से बाहर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इसके लिए बड़ी विदेशी कंपनियों और भर्ती एजेंसियों के साथ संपर्क बढ़ाया जा रहा है। विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी देने के लिए करियर काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। 33 सरकारी स्कूलों को डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील करने की योजना पर काम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का सर्वे और गैप एनालिसिस करवाने की तैयारी की है। इसके तहत स्कूलों में कमरों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं, भवन और अन्य आवश्यक संसाधनों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विभाग का कहना है कि पहले यह स्पष्ट किया जाएगा कि चयनित स्कूलों में पहले से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त निर्माण या संसाधनों की जरूरत होगी। कांगड़ा और मंडी के शिक्षा उपनिदेशालय से भी डे बोर्डिंग स्कूलों में बदलने के लिए आवश्यक जानकारी मांगी गई है। पहले चरण में 33 स्थानों पर नए डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति जारी की गई थी। अब इन स्कूलों को मौजूदा सुविधाओं के आधार पर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के खाली पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों के खाली पदों को मार्च तक भरने का प्रयास किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने से प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाने की जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। किसान आईडी बनाने के लिए कृषि भूमि का पूरा विवरण दर्ज करना जरूरी रहेगा। इसके लिए जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। खाद का वितरण भी इसी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना है कि किसान को उसकी वास्तविक कृषि भूमि के अनुपात में ही खाद उपलब्ध हो। रवि सीजन से पहले खाद की मांग बढ़ने की संभावना है, ऐसे में किसानों को समय रहते अपना पंजीकरण करवाने की सलाह दी गई है। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अभी एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन जारी है। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखेंगे। शिमला में चल रहे शिक्षकों के क्रमिक अनशन को रविवार को 64 दिन पूरे होने की जानकारी समाचार में दी गई है। शिक्षक स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े अपने विरोध और मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि उनकी मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है और सरकार को इस दिशा में निर्णय लेना होगा। वहीं शिक्षकों ने गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन का उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज करवाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
एनएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसमें कार्यस्थल की फोटो और स्थान संबंधी जानकारी भी रिकॉर्ड की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड कार्यस्थल से ही दर्ज किया जाता है। इससे अधिकारियों को कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक मौजूदगी की निगरानी में मदद मिलती है। विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी अथवा अनियमित उपस्थिति की संभावना को कम करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली एंटाइट ग्रांट के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। पंचायतें इस राशि से अपने कार्यालयों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्नीचर की खरीद निर्धारित सीमा के भीतर ही की जा सकेगी और इसके लिए सरकारी वित्तीय नियमों तथा खरीद प्रक्रिया का पालन करना होगा। खरीद के दौरान वित्त बजट लेखे और लेखा परीक्षा से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होगा। विभाग की ओर से पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कई पंचायतों के विकास कार्यों के प्लान पहले ही पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। ऐसे में कुछ पंचायतों के लिए फर्नीचर खरीद की मंजूरी बाद में मिलने से योजना में बदलाव की आवश्यकता भी सामने आ सकती है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा
5: है?
4: पता नहीं उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ इस समय आपने ट्यून किया है और ये है आपका पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला शुरू हो चुका है और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओं, आपके साथ रूबरू होते हैं रेडियो गुंजन के माध्यम से, करते हैं बातचीत, जानकारियाँ साझा करते हैं और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीतों से इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर के हम आते हैं। तो श्रोताओं, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ अपने ठिकाने पे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से शाम होते ही सब लोग अपने अपने ठिकानों में पहुँच जाते हैं। कोई गपशप के लिए इकट्ठा हो जाता है, कोई चाय की टपरी पे इकट्ठा होता है, कोई कहीं और इकट्ठा होता है, उसी तरह से हम इकट्ठे हो गए हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में अपने श्रोताओं के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको बता दें, इस समय धर्मशाला का तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस, वातावरण में नमी है 84%। और दिन भर आप सभी ने बारिश का आनंद लिया होगा। जी हां श्रोताओं, मौसम ने एकदम से करवट बदली है। जहां हम सैर ऋतु में खिली खिली धूप की कल्पना करते हैं या धूप होती भी है, वहीं पिछले दो दिनों से खूब जो है वो बारिश हो रही है और ठंड हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो सर्दी हो ही रही है, साथ ही साथ जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ठंड का असर जो है वो महसूस हो रहा है। और ये असर इसलिए हो रहा है क्योंकि पहाड़ों की चोटियाँ फिर से ताज़ा तरीन बर्फ़ से जो है श्रोताओं वो लद गई हैं, और यही वजह है कि हम सभी ठंड को महसूस कर पा रहे हैं। चलिए, बारिश का होना भी ज़रूरी है और पहाड़ों पे ठंड और बर्फ़ का आना भी बेहद ज़रूरी है। प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम ना तो छेड़छाड़ कर सकते हैं और प्रकृति के नियमों को ना ही हम बदल सकते हैं। वो जिस हाल में रखती है उस हाल में हमें रहना ही पड़ता है श्रोताओं। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत का आनंद आपके साथ खूब लेंगे, साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीतों का भी आनंद उठाएंगे। लीजिए कार्यक्रम में आनंद उठाइए बागी फिल्म के इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आपसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनवा रहे हैं। मौसम की बात हमने आते ही की श्रोताओं, और मौसम जिस तरह से ठंडा हुआ है, धर्मशाला में कितनी कर ठंड हुई दिन भर में ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन धर्मशाला से ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बात करें अपर धर्मशाला या नड्डी, धर्मकोट, भागसू और इंद्रुनाग वाली जो पहाड़ियां हैं, उस तरफ तो लोगों ने जो है स्वेटर जैकेट खूब अच्छे से पहनी थी, क्योंकि दिन भर बहुत बारिश हुई और तापमान इस समय जो है उससे भी 3-4 डिग्री जो है वो तापमान कम दिन में जो है वो महसूस किया गया। और लोगों को ये भी लग रहा था कि ये बरसात है या सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो मौसम कुछ इस तरह का आज रंग दिखा रहा था श्रोताओं की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मौसम जब इस तरह से बदलता है तो जाहिर सी बात है हमें अपना ख्याल रखना होता है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना होता है, घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बुज़ुर्ग, उनकी खास देखभाल की ज़रूरत हमें होती है। तो जब भी ऐसा मौसम फिर हो तो अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें श्रोताओं। और कल के मौसम की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले जो है वो धूप दिखा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली जब मौसम चेक किया गया तो कल भी जो है वो बारिश के आसार जो हैं वो हैं, यानी कि कल भी बारिश हो सकती है। इसलिए कल के लिए भी आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर बारिश होगी तो दिन को किस तरह से हमने व्यवस्थित करना है और किस तरह से दिन भर को हमने सुचारू रूप से चलाना है। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब आपके साथ साझा कर रहे हैं एक विचार। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जी हां श्रोताओं, जिंदगी में हर कोई दौड़ रहा है अपने अपने लेवल पर और हर कोई जीतना चाहता है। जीत हर किसी के नसीब में नहीं होती और हार बहुत से लोगों के नसीब में होती है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हार अच्छी होती है, लेकिन आज का जो ये हमारा विचार है ये हमें संदेश देता है कि हार जो है वो हमें खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी कमियां कहाँ रही थी, हम जीत के जश्न में मगन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी भी काम में हारेंगे, चाहे वो जिंदगी की भागा दौड़ी है या कोई भी कंपटीशन है जिंदगी का, या जिंदगी में किसी भी लेवल पे हम जो है वो कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर हम हारेंगे, तो हारने के बाद हम ये

जरूर देखते हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए, क्या हम में कमी रह गई, और अगर हम हारते हैं तो एक बार हम विचार ज़रूर करते हैं कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई। इसलिए कहा गया है कि हार हमें सुधारने का मौका देती है। हार ज़िंदगी में अगर आपको मिले तो निराश ना होइए, उसमें से ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसे जीत में किस तरह से बदला जा सकता है। और मज़ा श्रोताओं तभी आता है जीत का, जब हम हार करके जीत का जो स्वाद है वो चखते हैं। अगर हर बार हम जीतते ही गए तो उस जीत का भी वो मज़ा नहीं आता। इसलिए ज़िंदगी में हार आना भी ज़रूरी है, और हार के बाद मिली गई जीत का आनंद बहुत ही ज़्यादा दुगुना तीन गुना होता है। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओ आइए अब चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। सुल्तान फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में। सुनिए इस गीत को और बने रहिए श्रोताओं यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब एक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को धर्मशाला में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रभात फेरी 6 बजे कचहरी अड्डा स्थित हनुमान मंदिर के समीप से शुरू होगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बताया कि प्रभात फेरी में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, NSS स्वयंसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि भजन मंडलियों की सहभागिता के साथ प्रभात फेरी कचहरी अड्डा से पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल रोड तथा नगर निगम कार्यालय होते हुए गांधी वाटिका पहुंचेगी। वाटिका में महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रभात फेरी के उपरांत गांधी वाटिका में सर्वधर्म प्रार्थना एवं कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ADC ने शहरवासियों से गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित प्रभात फेरी में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने नगर निगम तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभात फेरी के मार्ग और गांधी वाटिका में स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए लगता है कि बातें बहुत इकट्ठी हो गई हैं तो थोड़ा सा बातों का आनंद लिया जाए। श्रोताओं बातों का आनंद लेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओ कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नमस्ते लंदन फिल्म से।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में श्रोताओ अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 28 सितंबर। हर दिन कुछ खास होता है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ खास नया लेकर के आता है। और आज का दिन जो है वो विश्व रेबीज दिवस के रूप में जो है वो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। और क्या है श्रोताओ ये दिन, क्यों शुरुआत हुई, इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही

जी अंशुता, वो तो कैसा लगा ये राजनीति फिल्म का गीत? इस गीत को गाया था आदेश श्रीवास्तव, शशि और रोसाली निकोलसन ने। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हमने बात की आज 28 सितंबर यानी वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो आज मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है वो है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यानी मिलकर ही मजबूत, ये है इसका संदेश। रेबीज से बचाव के लिए इंसानों, पशु चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकार और समुदाय सभी को मिलकर, एक साथ मिलकर काम करना होगा। श्रोताओं, बात करते हैं रेबीज की, कि रेबीज वास्तव में है क्या? रेबीज एक वायरल और बेहद गंभीर बीमारी है जो संक्रमित जानवरों की लार के संपर्क में इंसानों में अगर वो लार संक्रमित लार अगर वो पहुंचती है तो उससे इंसानों का जो रेबीज का खतरा है वो बढ़ता है। कुत्ते इंसानों में होने वाले रेबीज संक्रमण का लगभग 99% स्रोत हैं, ये रिसर्च में सामने आया है। और ये बीमारी मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रेबीज से होने वाली जो मृत्यु है उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर संभावित संक्रमण के बाद सही समय पर चिकित्सा और उपचार जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन जब बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब तक ये लगभग बहुत घातक हो चुकी होती है, या हम कह सकते हैं कि तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। इसलिए मोटे मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आपके पालतू जानवर जो हैं उनको आप पालें, उनके साथ प्यार स्नेह ज़रूर आप रखें, लेकिन उनकी देखभाल भी सही समय पर अगर करते हैं, सही समय पर आप उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो ये खतरा काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। श्रोताओं, रेबीज़ के खतरे बहुत खतरनाक होते हैं और क्या क्या होता है इसके बारे में भी कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे। विश्व रेबीज़ दिवस क्यों शुरू हुआ था ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की ओर, तब तक आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस की बात हम कार्यक्रम में इस समय कर रहे हैं और क्यों शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ ये भी आपको बताते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत ग्लोबल अलायंस ऑफ रेबीज कंट्रोल ने की थी और बाद में इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। ये तारीख प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने रेबीज के खिलाफ पहला प्रभावी टीका विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य सिर्फ रेबीज के बारे में जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को ये समझाना है कि रेबीज से होने वाली मौतें जो है वो रोकी जा सकती हैं और इसके लिए पशुओं का टीकाकरण, जागरूकता तथा समय पर इलाज जो है वो बेहद जरूरी है। बात करें रेबीज किस तरह से फैलता है। मुख्य रूप से संक्रमित जानवर की लार के जरिए वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कुत्ते या अन्य संक्रमित जानवर का काटना, संक्रमित जानवर का खरोंच लगाना, खासकर जब त्वचा टूट गई हो, संक्रमित लार का किसी खुले घाव या आंख मुंह जैसी श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आना, सिर्फ किसी जानवर को छूने या स्वस्थ साबुत त्वचा पर उसके चाटने से सामान्य रेबीज का एक्सपोजर नहीं माना जाता है। यानी श्रोताओं, किसी जानवर के इस तरह के जानवर के काट लेने से या उसके पंजे लगा देने से आपके त्वचा में अगर उसका असर होता है तो संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता है। शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं रेबीज अगर शरीर में प्रवेश कर जाए और इस तरह से बीमारियां ये हमें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो इसके बारे में भी श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। कार्यक्रम में अब चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 7:05 पर भी, उससे पहले 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। यूं ही बने रहिए श्रोताओं हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपैंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और हॉर्मुज के डमरूमथी में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया के डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIT द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराज, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और श्रोताओं को कार्यक्रम में ये भी बताना चाहेंगे श्रोताओं की आज हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें जो है वो झटके दे रहा है और रुक रहा है, और शायद ये रुकावट आपने भी महसूस की होगी। इस रुकावट के लिए हमें खेद है श्रोताओं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपको रेडियो ठीक से सुन पाने में अगर कहीं कहीं पे रुकावट आ रही है तो उसके लिए हमारे साथ टीम के कुछ सदस्य हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का भी व्यवधान कार्यक्रम में ना आए। लेकिन कई बार होता है श्रोताओं की जिस तरह से कुदरत हमारे वश में नहीं होती उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी हमारे हाथों से निकल जाती है और वो अपनी तरह से ही काम करती है या करवाती है। चलिए, जब तक हमारा सिस्टम सही चल रहा है तब तक हम भी आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवाते रहेंगे और आपके साथ यूं ही बतियाते भी रहेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। रेबीज की बात कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। श्रोताओ क्या होता है शरीर में जब वायरस हमारे शरीर में संपर्क करता है? वायरस संपर्क की जगह से शरीर के तंत्र की ओर बढ़ता है और अंततः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बीमारी आगे बढ़ने पर बुखार, बेचैनी, कमजोरी और तंत्रिका तंत्र से जुड़े गंभीर लक्षण हो सकते हैं। जबकि क्लिनिकल लक्षण शुरू हो जाते हैं तब बीमारी लगभग 100% घातक होती है। इसीलिए श्रोताओ रेबीज में सबसे बड़ा मंत्र है वो है लक्षणों का इंतजार नहीं करना है, संभावित संक्रमण के बाद तुरंत कार्रवाई करनी है। अगर संदिग्ध जानवर काट ले तो क्या करना है? ये सबसे जरूरी है श्रोताओं कि काटने के तुरंत बाद घाव को साबुन से और बहते पानी से धोएं और लगातार बहते हुए पानी में कम 15 मिनट तक अच्छी तरह से उस घाव को धोएं। उसके बाद तुरंत स्वास्थ्य विभाग यानी डॉक्टर के पास जाएं और वहां जाकर के फटाफट वैक्सीन और अन्य उपचार जो आवश्यक है वो करवाएं। वैक्सीन का पूरा कोर्स डॉक्टर के निर्देश के अनुसार लें। घरेलू नुस्खों का इंतजार ना करें। किस तरह से बचाव कर सकते हैं? श्रोताओं पालतू जानवर हम सभी के घर में अधिकतर हम कह सकते हैं होते ही हैं। उन पालतू जानवरों को आप जरूर रखिए लेकिन एक दायरे के अंदर रखिए और नियमित टीकाकरण उनका जरूर समय समय पर करवाते रहें। अनजान और आवारा जानवरों को छेड़ने से बचें। खासकर आपने देखा होगा श्रोताओं कि हमारे छोटे बच्चे जो थोड़े बड़े भी हो गए होते हैं रास्ते में चलते हुए किसी भी कुत्ते या बिल्ली को जो उन्हें देखने में अच्छा लगता है उसको वो छेड़ने की कोशिश करते हैं और जानवर पता नहीं होता कि किस समय वो झपट्टा मार दें, वो आपको काट लें। तो इस तरह से भी उनके काटने या उनके खरोंच लगने से रेबीज के लक्षणों की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी जानवर का व्यवहार आपको नॉर्मल से असामान्य लगे तो उससे उचित दूरी आप बना लें। अगर कोई जानवर काटता है उससे खरोंच वगैरह अगर आपको लगती है तो उसे छुपाने की बजाय तुरंत किसी व्यक्ति को, खासकर बच्चों के लिए ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई जानवर आपको काटता है या खरोंच लगाता है तो उसे कई बार बच्चे जो हैं वो छुपा लेते हैं कि घर वालों से डांट पड़ेगी, हमें बिल्ली ने या कुत्ते ने पंजा मारा है तो उससे जो है खरोंच लग गई है। इस तरह से जो है वो बीमारियों के बढ़ने का खतरा होता है, रेबीज का खासकर खतरा होता है। तो ऐसा ना करें, घर के बड़ों को जरूर इस बारे में बताएं। श्रोताओ ये थी रेबीज के बारे में हम कह सकते हैं जानकारी, किस तरह से बचाव किया जा सकता है और क्या आपको सही समय पर करना चाहिए। और बातें मुझे लगता है कहीं लंबी ना हो जाए, रेबीज के बारे में बात करते करते एक बहुत ही सच्ची घटना मुझे याद आ रही है और मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं के साथ वो साझा करनी चाहिए। श्रोताओं वैश्विक स्तर पर आज विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और क्योंकि हम धर्मशाला के वासी हैं, धर्मशाला में रहते हैं, तो धर्मशाला और आसपास से जुड़ी हुई बातें भी आपके साथ साझा करते हैं। मैं बात करूंगी श्रोताओं आपके साथ दाढ़ी गांव की। जी हाँ, दाढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जिसे अपर दाढ़ी हम कहते हैं वहाँ की ये घटना है और इस घटना को लगभग 20 साल हो चुके हैं। उस वक्त हम इतने भी छोटे नहीं थे कि हम समझ ना पाए, मतलब आज से 20 साल पहले आप मेरी आवाज़ को सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी रही होंगी। हमारे गांव में एक भाई होते थे, उनका नाम भी याद आ रहा है, ओमी उनका नाम था और उन्हीं के घर के पालतू कुत्ते ने जो है वो खरोंच लगाई थी।
श्रोताओं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित बात है जो आज विश्व रेबीज दिवस के समय मेरे जहन में आई तो लगा आपके साथ साझा करूं। तो ओमी भाई को उनके ही कुत्ते ने काटा, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि चलो काटा या चाटा या खरोंच भी लगाई तो कोई बात नहीं, अपना घर का ही पालतू कुत्ता है, उससे कुछ नहीं होगा। और कुछ समय के बाद वो जो कुत्ता था वो शायद पहले से ही संक्रमण का शिकार था या कुछ था, तो वो जो कुत्ता था वो धीरे धीरे पागलपन की उसके जो है कुत्ते में लक्षण दिखाई देने लगे, तो लोगों ने उस कुत्ते को पकड़ के बांध दिया। कुत्ता तो पागल हो गया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसी तरह के लक्षण जो हैं वो उन भाई साहब में नज़र आने लगे। वो नॉर्मल हरकतों से हट करके कुछ एबनॉर्मल हरकतें करने लगे, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गांव के बाकी लोग जो छोटे बच्चे थे या थोड़े बड़े भी बच्चे थे उनको उस तरफ जाने से रोका जाता था, और बड़े लोगों ने आकर के कहा कि उसे इस समय चारपाई के साथ बांध करके रखा है, उसके हाथ भी बांध दिए हैं, पैर भी बांध दिए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है और उसके मुंह से लार जो है वो निकल रही है और अपनी जीभ को वो लगातार ऐसे बाहर निकाले हुए है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कोई जानवर अपनी जीभ बाहर निकाल करके अपनी लार को टपकाता है। श्रोताओं, ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने जिस इंसान को आपने बड़ा होता हुआ देखा हो, और भाई साहब का उनका बहुत प्यारा परिवार था, दो बेटे हैं उनके, और अच्छी सुंदर सुशील उनकी पत्नी थी, लेकिन हुआ ये कि जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और असमय उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से गांव के लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई कि आपका अगर घर का भी कुत्ता है या पालतू कोई जानवर है, जीव है, तो उसके काटने के बाद तुरंत जो है वो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है। तो ये कहानी जो है एक सत्य घटना पर आधारित है जो मैंने आपके साथ साझा की। खैर, वो व्यक्ति तो असमय चले गए, लेकिन ये संदेश पूरे गांव को और रेडियो गुंजन के माध्यम से मैं आप लोगों को भी ये संदेश दे रही हूँ कि इस तरह का कोई भी जानवर, चाहे वो कितना ही प्रिय हो, आपका घर का क्यों ना हो, हम अक्सर अपने घर के जानवरों के साथ एक ही बर्तन में खा भी लेते हैं, अपने मुंह के निवाले उनको देते हैं, फिर उनको निवाला खिलाने के बाद उसी हाथ के साथ हम खा लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि उनकी लार जो है वो किस हद तक हमें संक्रमित कर सकती है और क्या क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं। तो श्रोताओं, इन बातों का ख्याल रखिए। खैर, उनके जाने के बाद उनके बच्चे धीरे धीरे उनकी माँ ने पाले, और आज दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, माँ को सुकून है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पिता के जाने का दुख तो ताउम्र रहता ही है श्रोताओं। तो श्रोताओं, ये थी एक कहानी कह लीजिए या बात कह लीजिए जो कि मेरे ही गांव में घटी थी कुछ साल पहले, और ये इसीलिए आपको सुनाई ताकि आप लोग भी जहन में इस बात को रखें कि पालतू जानवर चाहे कितने ही प्यारे क्यों ना हो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना ज़रूरी है, उनका सही समय पर टीकाकरण करना बेहद ज़रूरी है। श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब आपके साथ करेंगे हम और भी बातचीत, और समय है आपके साथ एक कलाकार के बारे में आपको बताने का। श्रोताओ आज इस कलाकार के बारे में कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, वो है तनुश्री दत्ता। जी हाँ श्रोताओ, भारतीय अभिनेत्री और मॉडल, उन्हें पूर्व भारतीय अभिनेत्री और मॉडल कहें तो सही रहेगा। उनका जन्म 19 मार्च 1984 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तनुश्री दत्ता के शुरुआती जीवन और करियर की बात करें श्रोताओं, तो वर्ष 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने और चॉकलेट से बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म आशिक बनाया आपने बहुत ही अधिक सफल रही और इसके गाने भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद उन्होंने भागम भाग, ढोल, गुड बॉय, बैड बॉय और रिस्क जैसी कई फिल्मों में काम किया। वर्ष 2010 में फिल्म अपार्टमेंट और रामा द सवियार के बाद उन्होंने फिल्म से, या यूं कहें कि फिल्मों से दूरी बना ली थी। श्रोताओ तनुश्री दत्ता के जीवन के बारे में हम कार्यक्रम में और भी बात करेंगे, आपको और भी इनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां बताएंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और श्रोताओ ये गीत तनुश्री दत्ता अभिनीत फिल्म आशिक बनाया आपने में से ही लिया गया है।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इस समय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के बारे में। श्रोताओं तनुश्री दत्ता ने जितनी भी फिल्में की उसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवाया और फिर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद तनुश्री ने अध्यात्म और शांति की तलाश शुरू की। उन्होंने कुछ समय आश्रम में और लद्दाख में बौद्ध तथा विपासना ध्यान का अभ्यास किया और मी टू आंदोलन और विवाद जो है वो तनुश्री दत्ता के जीवन का सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं कड़ी मानी जाती है। साल 2018 में तनुश्री ने अभिनेता नाना पाटेकर पर साल 2008 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज़ की शूटिंग के दौरान अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनके इस खुलासे ने भारत में मी टू आंदोलन की शुरुआत कर दी और इसके बाद वे काफ़ी चर्चा में आई और उन्होंने बॉलीवुड के कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खुलकर बात की। श्रोताओं तनुश्री दत्ता के जीवन के बारे में हम इस समय कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और उन्हीं द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए आनंद उठाइए कार्यक्रम में अगले प्यारे से गीत का। श्रोताओं गीत है रकीब फिल्म से और गायत्री गांजावाला ने इस गीत को गाया है।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रोताओं तनुश्री दत्ता के बारे में, और उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद जब अध्यात्म का रास्ता अपनाया और उसके बाद जब मुंबई में बॉलीवुड में वापसी की, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़ोरदार वापसी हम कह सकते हैं की, और मी टू आंदोलन के ज़रिए उन्होंने उन दबी हुई हम कह सकते हैं जो शोषण कई साल पहले उनका हुआ था उसके बारे में खुलकर चर्चा की, और उनके इस तरह से खुलकर चर्चा करने के बाद बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था या इस तरह की उत्पीड़न उनका हो चुका था कई साल पहले, और उन्होंने किसी के साथ भी ये बातें साझा नहीं की थी। जब तनुश्री दत्ता ने खुलकर बात की और नेशनल टीवी पर 2018 में आपने भी देखा कि सुर्खियों में वो रही थी, और इसी एक बात को लेकर के वो सुर्खियों में रही थी, अपनी बात को इतने दमदार तरीके से उन्होंने रखा और उन्होंने बाकी अभिनेत्रियों को भी प्रेरणा दी कि ऐसे ही नहीं सहना है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में ज़रूर खुल करके बात करनी है। तो इस बात को लेकर के तनुश्री दत्ता जो है वो बहुत अधिक सुर्खियों में रही थी और बहुत ही इनकी वाहवाही भी हुई थी इस बात को लेकर के। श्रोताओं, तनुश्री दत्ता के जीवन के बारे में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: प्रदेश में

0: अंतर मंत्रालय की टीम कांगड़ा व संवाद रोड के दौरे पर और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी अन्य ये 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल के जेताओं को 5,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की महिला खिलाड़ी पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह पुरुषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वे आज ऊना जिला के हरोली में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली के रामपुर पुल के समीप विकसित की जा रही न्यू हरोली की परिकल्पना में पूर्व सैनिक भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एचपी शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 1200 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है और 6000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बागवानी विकास का कार्य किया जा रहा है। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बरोट घाटी का दौरा कर एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी विकास कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। बागवानी मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत लीची, अमरूद, अनार सहित विभिन्न उच्च मूल्यों वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने धमच्यान क्लस्टर में जापानी फल की फ्यूफ्यू किस्म के 19,280 पौधों व संबंधित अधोसंरचना का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया अभियान की। देश में विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान आज भारत की औद्योगिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है और अब देश में ही बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।
1: देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में 95% से अधिक भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेशवासियों का भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीति व नियत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम देखकर मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी मंत्री व विधायक विचलित हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों में अपने ही घर में बुरी तरह हारने वाले मुख्यमंत्री अपने लिए विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 2,500 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप सहित स्थानीय विधायक व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का 6 सदस्यीय दल 2 दिवसीय कांगड़ा व चंबा जिलों के दौरे पर है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडू के नेतृत्व में ये दल आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान व पुनर्वास कार्यों का जायजा ले रहा है। केंद्रीय टीम ने आज धर्मशाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान, राहत व पुनर्स्थापना कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बाद में केंद्रीय दल ने चंबा जिले के चुवाड़ी में जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने केंद्रीय टीम को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान, राहत व पुनर्स्थापना कार्यों की जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय टीम ने भटियात क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपनी आधिकारिक अध्ययन प्रवास यात्रा के तहत कल शाम फिनलैंड के मशहूर शहर नॉर्वे पहुंच गए हैं। उनका 30 सितंबर तक यहां कई ऐतिहासिक व प्रसिद्ध महानगरों में जाने का कार्यक्रम है। विधानसभा अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रॉम्जो में भारतीय समुदाय के छात्रों के साथ संवाद करने के अलावा वहां के शिक्षा पद्धति का अध्ययन भी करेंगे। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया जलवायु परिवर्तन, समुद्री विज्ञान, पर्यावरण और आर्कटिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षाविदों से चर्चा करेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और अन्य भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल 29 सितंबर से मौसम में सुधार आएगा और केवल कांगड़ा व मंडी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
5: आज अर्ली मॉर्निंग से ही प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी है और लगभग पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग छाई हुई है। तो आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जिसमें मैदानी क्षेत्र भी हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले डिस्ट्रिक्ट, इन सभी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दौर जारी रहेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। कल 29 तारीख से वेदर में काफी रिडक्शन आएगा और कल संभावना है कि मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा, मंडी, यहां पर एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 30 तारीख से संभावना है कि पूरे प्रदेश में लगभग मौसम खुल जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के तहत पंचायतों को आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है। इसी के तहत चंबा जिला की 303 पंचायतों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा सांसद डॉ राजीव भारद्वाज ने आज चंबा जिला के करिया में भारत संचार निगम लिमिटेड के भारत नेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत नेट योजना से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को संचार व निशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी।
6: इसमें वाईफाई की सुविधा मिलेगी गांव में और ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। जिला कांगड़ा में इसका शुभारंभ हो गया था। मैंने उसी समय इनको सख्ती से निर्देश दे दिए थे कि एकदम से विद इन 1 मंथ ये योजना हमारे जिला चंबा में भी चलाई जाए, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता

0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में 10 पर भाजपा का कब्जा, लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम कांगड़ा व चंबा जिलों के दौरे पर, और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, अन्य इलाकों में बारिश का क्रम जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा
1: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं और हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। जी हां श्रोताओ, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द की ने घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: करना है।
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
1: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया।

नमस्कार, 91.5 तो मेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। अब आप सभी सुनेंगे आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल के 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य, बड़ी कंपनियों को प्रदेश में बुलाकर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की तैयारी। प्रदेश के 33 सरकारी स्कूल डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील होंगे, शिक्षा विभाग ने मांगी आवश्यक जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा मार्च तक डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे, विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत। 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना खाद नहीं मिलेगी, कृषि भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल करवाना होगा। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखकर स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली का विरोध करेंगे। बीबीजी आरएमजी में अब फर्जी हाजिरी पर लगेगी रोक, डिजिटल निगरानी के लिए एनएमएमएस ऐप का इस्तेमाल। प्रदेश की ग्राम पंचायतें 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी, 16वें वित्त आयोग की एनटाइट ग्रांट से होगी खरीद। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 1000 हिमाचली युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की ओर से अब तक 6 ओवरसीज प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें कुल 396 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 156 अभ्यर्थियों का विदेश में रोजगार के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं में से 68 युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रोजगार मिल चुका है, जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को विदेश भेजने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को प्रदेश से बाहर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इसके लिए बड़ी विदेशी कंपनियों और भर्ती एजेंसियों के साथ संपर्क बढ़ाया जा रहा है। विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी देने के लिए करियर काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। 33 सरकारी स्कूलों को डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील करने की योजना पर काम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का सर्वे और गैप एनालिसिस करवाने की तैयारी की है। इसके तहत स्कूलों में कमरों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं, भवन और अन्य आवश्यक संसाधनों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विभाग का कहना है कि पहले यह स्पष्ट किया जाएगा कि चयनित स्कूलों में पहले से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त निर्माण या संसाधनों की जरूरत होगी। कांगड़ा और मंडी के शिक्षा उपनिदेशालय से भी डे बोर्डिंग स्कूलों में बदलने के लिए आवश्यक जानकारी मांगी गई है। पहले चरण में 33 स्थानों पर नए डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति जारी की गई थी। अब इन स्कूलों को मौजूदा सुविधाओं के आधार पर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के खाली पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों के खाली पदों को मार्च तक भरने का प्रयास किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने से प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। किसान आईडी बनाने के लिए कृषि भूमि का पूरा विवरण दर्ज करना जरूरी रहेगा। इसके लिए जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। खाद का वितरण भी इसी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना है कि किसान को उसकी वास्तविक कृषि भूमि के अनुपात में ही खाद उपलब्ध हो। रबी सीजन से पहले खाद की मांग बढ़ने की संभावना है, ऐसे में किसानों को समय रहते अपना पंजीकरण करवाने की सलाह दी गई है। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अभी एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन जारी है। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखेंगे। शिमला में चल रहे शिक्षकों के क्रमिक अनशन को रविवार को 64 दिन पूरे होने की जानकारी समाचार में दी गई है। शिक्षक स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े अपने विरोध और मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि उनकी मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है और सरकार को इस दिशा में निर्णय लेना होगा। वहीं शिक्षकों ने गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन का उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज करवाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
एनएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसमें कार्यस्थल की फोटो और स्थान संबंधी जानकारी भी रिकॉर्ड की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड कार्यस्थल से ही दर्ज किया जाता है। इससे अधिकारियों को कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक मौजूदगी की निगरानी में मदद मिलती है। विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी अथवा अनियमित उपस्थिति की संभावना को कम करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली एंटाइट ग्रांट के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। पंचायतें इस राशि से अपने कार्यालयों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्नीचर की खरीद निर्धारित सीमा के भीतर ही की जा सकेगी और इसके लिए सरकारी वित्तीय नियमों तथा खरीद प्रक्रिया का पालन करना होगा। खरीद के दौरान वित्त बजट लेखे और लेखा परीक्षा से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होगा। विभाग की ओर से पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कई पंचायतों के विकास कार्यों के प्लान पहले ही पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। ऐसे में कुछ पंचायतों के लिए फर्नीचर खरीद की मंजूरी बाद में मिलने से योजना में बदलाव की आवश्यकता भी सामने आ सकती है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है? अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था।

0: कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
1: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
2: देख पवन आ गया।
3: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
2: तुझे उसे टीबी है।
3: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
3: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ। मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना। ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा।
11: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।